आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026 हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश गान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में

ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां श्री हनुमान भी होंगे।

गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों को सुना वो कलाकार थे देवाशीष गांगुली, मेघा सचदेवा, हरिओम शरण, प्रीति सागर, लता मंगेशकर और साथी। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओ, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें।

0: घड़ी की इशारा कर रही है चिंतन कार्यक्रम की तरफ, तो आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत सत्याग्रह।
1: मनुष्य के जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। इस विश्व में प्रत्येक पल में जीवन आगमन होता है, लेकिन महामानव सदियों में एक पैदा होता है। और महात्मा गांधी एक ऐसे ही महामानव थे जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी तथा चिंतन व्यापक, विशाल, आधार सत्य, अहिंसा व लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। गांधी जी के चिंतन बोध में सत्य अहिंसा के अतिरिक्त उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण व चर्चित संबल था सत्याग्रह। 11 सितंबर 1906 के दिन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के उस शस्त्र साधन का जन्म हुआ जिसने निर्बल को बलवान बनाया, सभी कौम को एक किया और इतिहास की सबसे शक्तिशाली

0: साम्राज्य का अंत किया। बापू ने सत्याग्रह की शक्ति का प्रयोग कर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन के खिलाफ आवाज उठाई। ये बतलाया कि हिंसा से केवल बड़ी हिंसा का ही साम्राज्य बढ़ता है। इसके साथ ही इसमें केवल राज्यकर्ता बदलते हैं और राजतंत्र वही रहता है, और इसी कारण कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने की सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथों में ही फेर बदल कर आती रहती है। 11 सितंबर 2001 और 11 सितंबर 1906 विश्व इतिहास के पटल पर ये दो अहम तारीख हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, एक प्रतिबिंब की तरह। यदि ये केवल एक संयोग है तो कोई मामूली संयोग नहीं, शायद प्रकृति की तरफ से हमें एक वैधानिक चेतावनी, क्योंकि सत्याग्रह का जन्म भी 100 वर्ष पूर्व 11 सितंबर के दिन ही हुआ। एक तारीख निर्भय व स्वाधीन बनाने की तो दूसरी भयभीत और पराधीन करने की। इसमें से हम जिस किसी के इतिहास को अपना इतिहास समझेंगे वही यह तय करेगा कि दुनिया में कौन सी छवि को हम अहमियत देना चाहते हैं और किस छवि के साथ जीना व बढ़ना चाहते हैं। साम्राज्यवाद व आतंकवाद की शक्ति का हिस्सा बनके या उसके जवाब की शक्ति का हिस्सा बनकर। जिस 11 सितंबर का दिन सन 2001 से पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए याद किया जाने लगा, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके ठीक उलट 11 सितंबर 1906 का दिन भी इतिहास में सत्य और अहिंसा की शक्ति सत्याग्रह को मनवाने वाले दिन के तौर पर ही दर्ज है। गांधी जी द्वारा यही तारीख अहिंसावादी और सत्य के दर्शन सत्याग्रह के नाम पर भी इतिहास में दर्ज है। 11 सितंबर 2001 की घटना जिसने मानवता को शर्मसार किया, हमें यदि इसका सशक्त व उचित जवाब देना है तो हमें चाहिए कि हम फिर से 11 सितंबर 1906 को रचे इतिहास को दोहराएं। पश्चिम वाले गांधी जी की प्रासंगिकता को समझ गए हैं और कई जगह पर प्रयास जारी हैं। विश्व में बस दो ही विकल्प बचे हैं, पहला है हिंसा और मानव जाति के अंत का और दूसरा है प्रेम, आपसी भाईचारे, सद्भाव और इन सब की परिणति के लिए सत्याग्रह का। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांधी अपने चिंतन के साथ अमर थे, अमर हैं और हमेशा रहेंगे।
1: चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सत्याग्रह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

अब एक नज़र आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कांड पाठ। गायक कलाकार होंगी रंजना जोगेलकर। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनिएगा वार्ता सस्ती और टिकाऊ खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओपी राजपूत से। कृपा शंकर की बातचीत आप इसमें सुन सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर वार्ता सुनिएगा दृष्टि दोष कारण और उपचार। वार्ताकार होंगे एचपी सिंह। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा 8:45 पर, 9:25 पर, 10:12:30 पर, दोपहर 2:45।

भक्त सुदामा पर नौटंकी। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा में सुनिएगा सेहत और सजगता, साथ ही आप सुनेंगे सुख शांति में है घर की खुशी। वार्ता प्रसारित की जाएगी प्रगति के रास्ते में ग्रामीण महिलाएं। वार्ताकार होंगे लकी आलम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनेगा मनहर उदास की गाई चंद गजलें। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग ठुमरी भैरवी में गायन। इसके साथ ही आप सुनिएगा देवाशीष चक्रवर्ती का भटियाली धुन में गिटार वादन। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी लिपुलेख दर्रा पर। वार्ता में सुनिएगा सतत विकास शांति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। वार्ताकार होंगी रिया मिश्रा। शाम 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में आप सुनिएगा चर्चा सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। साथ ही एक और चर्चा आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। वार्ता में सुनिएगा गर्मियों में दिनचर्या और योग। वार्ताकार होंगी शैलजा दुबे। साथियों का मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेंगे चर्चा जल ही जीवन है। वार्ता में सुनिएगा ओजोन परत का महत्व। वार्ताकार होंगी अर्चना अग्रवाल। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनिएगा वार्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सौरभ चैन।

मेरी माटी मेरा देश, ये कम्पेयर्ड कार्यक्रम आप सुनिएगा शाम 7:31 पर। फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे से, और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा रेडियो पत्रिका चित्र भारती, और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। गायक कलाकार थी रंजना जोगेलकर। अब समय हो चला है खेती की बातें कार्यक्रम का। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, सस्ती और टिकाऊ खेती विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर ओपी राजपूत से। यहाँ कृपा शंकर की बातचीत आप सुनेंगे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी कृपा शंकर जी।
1: डॉक्टर साहब, सस्ती और टिकाऊ खेती का क्या मतलब है?
2: हाँ कृपा शंकर जी, जो सस्ती और टिकाऊ खेती की बात आ रही है आजकल, उसका अर्थ यह है कि हम जो बढ़ती हुई हमारी जो आवश्यकता हैं आज, उसकी आपूर्ति कैसे करें और जो भी संसाधन हमारे खेती में उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग करें और ऐसा समुचित करें कि उत्पादन भी बढ़ता जाए और हमारी जो इनका ह्रास भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो इसी को हम कहेंगे टिकाऊ खेती जो है।
1: टिकाऊ खेती के लिए डॉक्टर साहब किसान भाइयों को प्राकृतिक संसाधनों से और जूझना पड़ रहा है।
2: हाँ बहुत बढ़िया। हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों में जैसे पानी है जो मुख्य रूप से है, सिंचाई जल का हमको समुचित उपयोग करना होगा और दिनों दिन ये जो हमारी जो वर्षा देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है और भूमि का जो जल स्तर है नीचे घटता चला जा रहा है, इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारा जो भी उपलब्ध पानी है हम उसको फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के अनुसार दें।

0: डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती के लिए हमें पर्यावरण की विशेष आवश्यकता है।
1: हाँ, बहुत बढ़िया, आपने ये प्रश्न पूछा है कृपा शंकर जी। जहाँ पर्यावरण सुधारने की बात आ रही है, हमने अब तक जो है पहली जो हरित क्रांति हमको मिली 1968 से लगा करके 85 तक, उसमें हमने अधिक से अधिक उर्वरकों का, अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग किया। तो कीटनाशियों के प्रयोग से हमारा ये पर्यावरण जो बिगड़ा है उसको हमें सुधारना है, क्योंकि कीटनाशक जो जितने भी हमारे हैं, चाहे फफूंदी नाशक हैं या शाकनाशी हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमको जो है आज देखना है कि इसके क्या विकल्प होंगे।
0: डॉक्टर साहब, कीटनाशक दवाएं बहुत महंगी होती जा रही हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत जूझना पड़ रहा है। इसका कोई और विकल्प है आपके?
1: हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। ये जो कीटनाशी हमारे जो बड़े महंगे हैं, जैसे देखा कि कीट मारने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं मेलाथियॉन भी कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य भी हमारी जो हैं दवाएं हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका विकल्प हमारे दिमाग में ये है कि पौधों के रस हैं उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा पौधों के रस में,
0: डॉक्टर साहब, आपने अभी रस वाली बात की, पादप जो रस हैं वो हमें कौन-कौन सी फसल से प्राप्त हो सकते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा। ये जो हमारे गांव में देखा होगा कि नीम है, नीम जो है खूब उपलब्ध है, और हम नीम की निवौली जो है उनको इकट्ठा करें, उसका सुखा करके पाउडर बना लें, और या उसका निवौली का तेल निकाल लें, तो तेल का अगर हम उसका छिड़काव फसलों पर कर देंगे, 0.03% का एक जो घोल है इसका, नीम का तेल का, फसलों में कीड़ा मारने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। साथ ही ये नीम तो है ही, और हमें नीम जो अब आ रही हैं, बौर आ रहा है, इस समय फूल आ रहा है, देखा कि जून जुलाई अगस्त में निवौली भी होंगी, हमारा किसान भाई से आराम से एकत्रित कर सकता है, और जिससे भूमि में प्रयोग से कोई भी कीड़ा जैसे दीमक ही है उस
0: नहीं
1: नहीं लगेगी।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने नीम वाली बात की। मैं एक खेती के लिए फसल जो रस कैसे प्राप्त किया जाए, ये
1: ये जो
0: कीटनाशक दवाएं महंगी होती जा
1: हाँ
0: रही
1: ठीक
0: हैं।
1: है, देखो अन्य जो हमारे पादप रस हैं उसमें जैसे तुलसी जी है, तुलसा जिसको कह
0: अच्छा,
1: देते हैं, और तंबाकू है, मेंथा है, हल्दी है, इनका हम जो अर्क निकाल लें, तो अर्क निकालने के बाद जो अगर फसल में कोई भी कीड़ा लग रहा है, उसका अर्क का छिड़कने से घोल बनाने के बाद अगर फसल पर छिड़क देंगे
0: डॉक्टर
1: तो
0: साहब,
1: फसल पहले कीड़ा मर जाएगा।
0: हम इसका घोल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे?
1: जैसे हमको तुलसी जी लेनी है तो तुलसी जी के पत्ते ले लीजिए, और तुलसी की आप काश्त भी होने लगी है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे बहुत से प्रगतिशील किसान भी तुलसी की खेती करने लगे, महज इसीलिए तुलसी जी की खेती कर रहे हैं कि हम जो है आगे से जो है रस निकाल लें कूट पीस करके पत्तियों का, और जो भी हमारा जो रस आ जाएगा उसको हम फसल पर छिड़क देंगे।
0: नहीं डॉक्टर साहब, ये रस वाली बात अभी की आपने, ये सुखा के किया जाए या ये गीला किया जाए, इसे ये और
1: वो
0: बताएं।
1: हाँ, चाहे आप सुखा के करें चाहे गीला करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे तुलसी जी की पत्तियां आप हरे हरे हरा ले लीजिए, हरी पत्तियों को आप रस निकाल लीजिए और फसलों पर छिड़किए जो है।
0: एक बात और है डॉक्टर
1: हाँ
0: साहब,
1: जी
0: कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो घटती जा
1: हाँ
0: रही है, इससे सुधारने के लिए हम कौन-कौन सी फसल पद्धति अपनाएं?
1: हाँ बहुत अच्छा। जैसे हम इस क्षेत्र में आगरा मंडल में विशेष रूप से बाजरा और गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं, या बहुत से हमारे काश्तकार भाई धान और गेहूं भी ले रहे हैं। ये फसलें हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से तत्वों का ग्रहण करती हैं। हमको ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमारी ये फसलें हम ले रहे हैं लगातार और भूमि की उर्वरा शक्ति घट गई है, तो उस जगह किसान भाई मेरे दिमाग में आता है कि हम दलहनी फसलों का इनका इस्तेमाल करें, चाहे वो हम गर्मियों में करें, चाहे रबी में करें, चाहे हम खरीफ की फसल में करें।
0: दलहनी फसल डॉक्टर साहब कौन कौन सी होती है?
1: हाँ बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हम जो गर्मियों में बात आती है, एक तो मूंग है, उड़द है, अरहर है और लोबिया, ये हमारी जो है गर्मियों में है और यही बरसात में भी आती हैं।
0: डॉक्टर साहब,
1: हाँ
0: मूंग और उर्द वाली

0: बात जो आपने
1: हाँ
0: कही, हमें पानी से और जूझना पड़ रहा है, ये
1: बहुत,
0: फसल नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ, तो इसके लिए क्या विकल्प है आपका?
1: हाँ, हम ये सोचते हैं कि हमारे जिन काश्तकार भाइयों के पास पानी की सुविधा गर्मियों में नहीं है, तो वो गर्मियों में ये मूंग या उड़द ना लें। हाँ, इसकी जगह हम ये समझते हैं कि जैसे बाजरा है, बाजरा के बाद गेहूं लेता है, तो बाजरा के स्थान पर जो है अरहर अगर लेता है बरसात में, तो गेहूं भी आराम से हो जाता है। तो ऐसी आजकल हमारे पास बहुत सारी अरहर की भी किस्में हैं कि जो जल्दी पक जाती हैं, जैसे उपास 120 है। तो मैं समझता हूँ कि या तो हम जो है खरीफ में कोई दलहन ले लें, जैसे हम बाजरा के स्थान पर अरहर ले गए, या हम रबी में ले लें, रबी में क्या है, या गेहूं के स्थान पर चना ले लें। तो ये हमारी दलहनी फसलों में ये आ गई बात जो है हमारे जो विकल्प होंगे जो कि हमारे फसल चक्र के।
0: डॉक्टर साहब, मैंने
1: हाँ
0: सुना है कि केंचुआ की खेती भी होने लगी है यहाँ।
1: हाँ बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न ये पूछा है कि जहाँ टिकाऊ खेती की बात आज हम बात कर रहे हैं किसान भाई, टिकाऊ खेती को जो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान पहुँचाया है इन रसायनों ने, जो कीटनाशी हैं, फफूंदनाशी हैं या शाकनाशी हैं, इनमें अंधाधुंध हमारे किसानों ने प्रयोग किया, उसकी वजह से हमारी ये जो है पर्यावरण बिगड़ा है। और उसके लिए यदि हम जो बात करते हैं कि पर्यावरण का जो असली मित्र है हमारा, किसान का मित्र, जिसको कहते हैं केंचुआ, और केंचुए को जो है देखा होगा कि ये भूमि का थर्मामीटर भी बहुत से कह देते हैं कि साहब ये जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का एक जो है एक कारक है। तो ये जो केंचुआ हैं अब हमारी खेती में दिखाई नहीं दे रहे हैं, भूमि में बिल्कुल नष्ट कर दिए हैं, और इन्हें हमें पालना है। और इनके द्वारा जो भी कूड़ा करकट हमारे सामने आता है, जैसे बाजरे का बूलरा आ गया, धान का पुआल आ गया, मक्का की कड़वी आ गई हमारी, ये बच जाती हैं, फेंक देते हैं हम जो है, या हमारे जो खरपतवार हैं, जितने भी घास फूस हैं, उनमें हम जो है देखें कि इनको केंचुआ पाल करके अच्छी खाद में परिणत कर देंगे, जिससे कि कम से कम गोबर की खाद से 5-7 गुनी नत्रजन, फास्फोरस, पोटास मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब, सस्ती और टिकाऊ खेती के लिए आपने हम लोगों को या किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खेती की बातें एक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी राजपूत से कृपा शंकर की बातचीत, विषय था सस्ती और टिकाऊ खेती। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, उसके उपरांत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेंगसिंह तवांगः, केन्द्रीयपूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे

0: चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अक्सर अभिभावक पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा चश्मा लगा रहा है लेकिन इसके बाद भी इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है कि चश्मा लगाने से नंबर रुक नहीं सकता, न उतर सकता। चश्मा लगा दिया जाता है और बार बार चेक इसीलिए कराना जरूरी होता है कि जब नंबर बदल जाए तो उसको हम बदल करके जो नया नंबर हो वो दे दें, जिससे कि आंख पूरा काम करती रहे। अगर आंख काम पूरा नहीं करेगी तो आंख काम करना सीखेगी नहीं। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें के बच्चे को किसी एक आंख से या दोनों आंखों से कम दिख रहा होता है। बचपन में किसी कारण से यदि एक आंख से बच्चे को कम दिखाई देने लगे, जैसे कि आंख में कोई तकलीफ हो जाए और हम उसकी आंख पर पट्टी बांधें, एक हफ्ते के लिए भी पट्टी बांधने या 2 हफ्ते के लिए पट्टी बांधने, तो ये संभव है कि उस आंख का विकास वहीं रुक जाए और जो स्वस्थ आंख है वो काम करती रहे, आगे आगे काम करती रहे और बच्चे को इस बात का आभास भी ना हो कि उसकी एक आंख काम नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिन्हें कि ये पता नहीं होता है कि उनकी एक आंख से उन्हें नहीं दिख रहा होता। ये इतनी आम बात है कि व्यक्ति जब नौकरी के लिए जाता है 18 वर्ष की आयु में, वहाँ मेडिकल चेकअप होता है उसका और वहाँ उसको बताया जाता है कि उसकी एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा, और वो इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता कि उसे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। वो आंख उसकी बचपन से ही कमजोर हो चुकी होती है। अगर इसका पता जल्दी लग जाए तो इसका उपचार संभव है। इसीलिए जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उससे पहले उसका चेकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा स्वयं बता नहीं सकता कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। और अगर उस उम्र पर पता लग जाए कि इसको ये समस्या हो रही है तो चश्मे के द्वारा या किसी भी और तरीके से उसको हम रोशनी को उसकी को कायम रख सकते हैं। पर 18 वर्ष की आयु में उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु तक आंख का पूर्ण विकास हो चुका होता है और एक आंख जो बचपन से ही देखना नहीं सीख पाई है उसको सिखाना उस उम्र पर जाकर संभव नहीं हो पाता। तो एक तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बच्चे को भेंगापन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये संभव है कि उसका भेंगापन सिर्फ चश्मा लगाने से ही ठीक हो जाए, किसी ऑपरेशन वगैरह की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देना, इस भ्रम में रहना कि आगे चल के ठीक हो जाएगा, तो ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे हमेशा के लिए उसकी रोशनी को कम कर सकता है। भेंगापन कभी भी इग्नोर न करें, उस पर हमेशा ध्यान दें और उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। भेंगापन इस बात का लक्षण है कि आंख में कोई ना कोई समस्या आ रही है, ये अलार्म है इस बात का कि कोई समस्या आ रही है और तुरंत इसकी जाँच की जरूरत है। अपने आप से भेंगापन ठीक अधिकांशतः नहीं होता है। अगर चश्मे से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाएगा, लेकिन समय रहते उसका उपचार बहुत जरूरी है। एक बहुत आम सवाल पूछा जाता है कि अगर हम बच्चे को गाजर का जूस पिलाएं या अच्छा खाना खिलाएं तो इसका चश्मा उतर जाएगा या नहीं। तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि कुपोषण के वजह से यदि कोई कमी आई है तो वो तो गाजर खिलाने से या और अच्छा भोजन देने से ठीक हो सकती है, पर जो आकार आंख का बन गया है तो बाकी शरीर के आकार की तरह यह भी इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि हम क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं। तो गाजर का जूस पीने से चश्मा नहीं उतर सकता, ये अच्छी बात है, अच्छा भोजन लें शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन चश्मा उतारने में उसका कोई महत्व तो नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि माता या पिता में से किसी एक की आंखें कमजोर हों, चश्मा लगाते हों या दोनों चश्मा लगाते हों, तो बच्चे की नियमित जाँच अवश्य कराते रहें, क्योंकि इस बात की पूरी पूरी संभावना होती है कि बच्चे या बच्चों में से किसी एक की आंखें कमजोर हो सकती हैं और उसको किसी भी तरह नकारे नहीं, जरूर चेक कराते रहें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता दृष्टि दोष कारण और उपचार विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर HP सिंह और अब सुनते हैं देश गान।

0: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल
1: एप। केवल भगवान से डरो, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए IPL मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की।

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
1: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 1 किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का।

कार्यक्रम में सबसे पहले नजर स्थानीय सूचनाओं पर। सूबेदारगंज पांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे पीआरओ ने बताया है कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित रहेगी। वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण मान्य नहीं। जी हां, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में यह लागू किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

मई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही हैं। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया है कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी।

आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ के अनुसार कानपुर सेंट्रल मदुरै स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरै से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित की जाएगी।

बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में अब नहीं होगी परेशानी। कैंट रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में परेशानी का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे यात्रियों के लिए ई कार की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को ई नीलामी प्रक्रिया पूरी हुई है। एक निजी कंपनी से 3 साल का अनुबंध इसमें हुआ है। इसके अलावा इसमें रेलवे को 25.05 लाख का राजस्व मिलेगा। कैंट रेलवे स्टेशन से हर दिन 25,000 यात्री सफर करते हैं। इसमें 5,000 से 6,000 बुजुर्ग और दिव्यांग यात्री होते हैं। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि स्टेशन परिसर में ई कार का संचालन होगा। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। रेलवे को 3 साल के अनुबंध में रेलवे को हर साल 8.35 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा।

सर्किट रेट में, माफ कीजिएगा, सर्किल रेट में बदलाव का काम धीमा, अगस्त से हो सकता है लागू। जनगणना के चलते जिला प्रशासन और निबंधन विभाग ने सर्किल रेट में बदलाव का कार्य धीमा कर दिया है। पहली बार प्रदेश सरकार के आदेश पर एक समान सर्किल रेट लागू किया जा रहा है। सड़कों का रेट अब गलियों पर लागू नहीं होगा। नए सर्किल रेट को अगस्त तक लागू किया जाएगा। पिछली बार 18 अगस्त 2025 को सर्किल रेट में 40 से 50% की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार 15 से 30

प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी नगर निगम की सीमा वाले क्षेत्रों में होगी। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से एक समान सर्किल रेट लागू करने के आदेश दिए थे, लेकिन रेट लिस्ट तैयार नहीं हो पाई थी। अगस्त 2025 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी के चलने से 3 से 4 माह तक पैनामों की संख्या में 15 से 25 प्रतिशत तक की कमी रही थी। अभी तक अगर कोई मकान या फिर दुकान व गोदाम गली में है, ऐसी दशा में सड़क का रेट लागू होता था, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, अब गली का ही रेट लगेगा। राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वे कर गलियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रेट लिस्ट में अंतर होता है, इसे एक समान करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। वापस रुक करते हैं स्थानीय सूचनाओं पर। जिम्बा स्विमिंग पूल का 20 तक कराएं पंजीकरण। निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों और होटल में संचालित स्विमिंग पूल और जिम का पंजीकरण कराना अब अनिवार्य है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया है कि 20 मई तक पंजीकरण करा लें, अन्यथा इस स्थिति में विविध कार्रवाई भी की जा सकती है।

और अब खबर आपके बेहद काम की। डिजिटल अरेस्ट से बचाने को सीबीआई का अभय। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अभय नाम से एक एआई आधारित हेल्प बॉट लॉन्च किया है। यह देश का पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचाना है। सीबीआई के अनुसार साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आम लोगों के लिए असली और नकली दस्तावेजों में

अंतर करना भी अब कठिन होता जा रहा है। विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट नामक साइबर ठगी में अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। वे नकली नोटिस भेजकर पीड़ित को किसी अपराध में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं और फिर उसे घंटों या कई दिनों तक वीडियो कॉल या फोन पर निगरानी में रखने का नाटक करते हैं। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसी तरह की धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने के लिए सीबीआई ने अभय सिस्टम विकसित किया है।

अब बात कर लेते हैं मौसम की। शहर में शुक्रवार को तेज धूप ने लोगों को झुलसा दिया। दोपहर में गर्म हवा चलने और सूरज की तपिश से शहरवासी बेहाल नजर आए। घर या बाहर कहीं चैन नहीं मिला। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 19 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिन और रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही लू झुलसाएगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शहर में शुक्रवार को सुबह 4 बजे के करीब बूंदाबांदी हुई। सुबह हल्के बादलों की वजह से उमस अधिक रही और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली। सुबह 8:30 पर करीब बादल छाए रहे और धूप निकल आई। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि होती चली गई और दोपहर 12 बजे के बाद तेज हवा चलने लगी। आसमान साफ होने की वजह से सूरज की तीखी किरणें चुभती हुई नजर आईं। दिन भर यही स्थिति रही। अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी के अनुसार कोई मौसम तंत्र अभी सक्रिय नहीं है। मौसम शुष्क होने से आगामी सप्ताह में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखने को मिलती रहेगी। तो ऐसे में गर्मी से अपने शरीर का, अपने लोगों का, खुद का विशेष ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है।

श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में। विलुप्त महिला का नाम लक्ष्मी, पत्नी अवनीश कुमार, निवासी ग्राम सरसई मासूमपुर करहल मैनपुरी से, दिनांक 14 अप्रैल 2026 से लापता है। लक्ष्मी की उम्र 40 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा सामान्य है। घटना के समय उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना करहल मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त महिला का नाम मोनिका, पत्नी सुरजीत, निवासी रानीपुर थाना करहल मैनपुरी से, दिनांक 15 अप्रैल 2026 से लापता है। मोनिका की उम्र 26 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। घटना के समय उन्होंने सलवार सूट पहन रखा था। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना करहल मैनपुरी को सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार विलुप्त युवती का नाम सुनैना, पुत्री राजेश, निवासी बजहरा मोहल्ला थाना अचनेरा से, दिनांक 31 जुलाई 2025 से लापता है। सुनैना की उम्र करीब 15 वर्ष, रंग सांवला, कद 4 फुट 8 इंच, आंखों का रंग भूरा है। घटना के समय उन्होंने हरे रंग का सूट, काला दुपट्टा, सफेद पैंट और लाल रंग की चप्पल पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी बजहरा थाना अचनेरा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। आज है नेशनल डेंगू डे। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसून से पहले डेंगू की रोकथाम, मच्छरों पर नियंत्रण, इसके प्रति जागरूकता को फैलाना है। इस दिन का मुख्य जो फोकस होता है वो होता है एकजुट होकर कार्य करें, उन्मूलन करें या फिर सामुदायिक भागीदारी। जहाँ सफाई और सुरक्षा थीम इस बार क्या जो 2026 की है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 के अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो मानसून से पहले मच्छरों के प्रजनन को रोकना, रोकथाम के उपाय में जांच, सफाई, सुरक्षा, कूलर, टायरों और गमलों में जमा साफ सफाई, पानी को खत्म करने की जैसी चीज़ें हैं। घर में रुके पानी को हर 7वें दिन बदलें, दिन में काटने वाले एडीज मच्छरों से बचें, पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छरदानी का उपयोग करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस दिवस के अवसर पर देश भर में जन जागरूकता रैलियां और सफाई अभियान आज चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद का ख्याल रखें, बीमारियों से बचे रहें, खासकर गंदगी को बिल्कुल भी अपने आसपास ना होने दें, ताकि आप डेंगू जैसी जो परेशानियां हैं इनसे आप हमेशा के लिए बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।

तो श्रोताओं, आप अपना और अपने लोगों का विशेष ख्याल रखें। आज के कार्यक्रम आसपास में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ और उसके उपरांत उर्दू समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़

0: बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी।

0: पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजरायल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा

0: आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस, इंडिया एंड द UAE साइन स्लू ऑफ एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचेस नेदरलैंड्स ऑन सेकेंड लेग ऑफ हिज 5 नेशन टूर। Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. India and the UAE have signed a series of landmark agreements covering strategic petroleum reserves, long-term LPG supply and defence cooperation. The pacts were inked following high-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, held amid the ongoing West Asia conflict. The UAE has also pledged investments worth $5 billion in India. Prime Minister Modi reached UAE yesterday on the first leg of his five-nation tour. One of the pacts include strategic collaboration agreement signed between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company to strengthen India's energy security, including cooperation in petroleum reserves and possible collaboration on liquid natural gas and liquefied petroleum gas LPG storage facilities. The Ministry of External Affairs in a statement said the agreement will enhance the UAE's participation in India's strategic

0: इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकतदारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकतदार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकतदारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल्स से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरगर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर माजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN Kao यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म व जब्त का मामला नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का ये कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया

0: फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई दो तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोजामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक वस्ता में अमन इस्तेकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की। समीर के लिखे गीत को संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की आवाज में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम था दिल। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साजन चले ससुराल से। आवाजें हैं कुमार सानू अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवंट की।

अनुराधा पौडवाल उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म बेटा में। शब्द रचना थी समीर की, संगीत रचना आनंद मिलिंद की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रंग से। आवाजें हैं अलका याग्निक कुमार सानू की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवंट की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म राजा से। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना नदीम शिवन की।

राजा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ देर बाद हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13,50,00,000 रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
3: ये लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है कि वादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
2: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली

0: इनवेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
1: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस को। इसके द्वारा आप क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते थे, दर्द ज्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
0: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विद्युत प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही हैं, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी साझा किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पझरिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को ₹50 प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डायटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र

0: पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए NRC में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकास खंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम गीत मंजूषा का

कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हीर रांझा। कैफी आज़मी की रचना को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

पुराने फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने जो सुना वो था ममता फिल्म से। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था मशहूर सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था रोशन ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजुषा अब यहीं संपन्न होता है।

शुद्धोप समय हो चला है लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संवेद स्वर में कुछ प्रचलित लोकगीत।

0: संवेद स्वर में गए इन ब्रज लोकगीतों के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का।
1: ये जो हल्की हल्की
0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सन ऑफ सरदार से। गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत बद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म सन ऑफ सरदार से। गीत को गाया था राहत फतेह अली खान ने। संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया और शब्द रचना थी इरशाद कामिल की। कार्यक्रम में एक बार फिर सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में दबंग फिल्म का गीत। फैज अनवर की रचना को संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

जावेद बशीर की आवाज में आप सुनते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म में दोबारा का यह गीत। गीत को लिखा है रजत अरोड़ा ने, संगीत बद्ध किया है प्रीतम ने।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में अभी आपने सुना जावेद बशीर को। रजत अरोड़ा के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बादशाह से। गीत को गाया है नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान ने। मनोज मुंतसर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का आनंद अभी आप ले रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आज आपने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत सुने वो फिल्में थीं सन ऑफ सरदार, दबंग, लाइफ इन अ मेट्रो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, एमएस धोनी और बादशाह हो। गायक कलाकार थे राहत फतेह अली खान, सोहम, जावेद बशीर, अरमान मलिक, नुसरत फतेह अली खान। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभय नारायण मलिक का राग केदार में अलाप एवं धमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभय नारायण मलिक का राग केदार में अलाप और धमार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बॉलीवुड के अभिनेता की जिसने बहुत कम समय में अपनी मेहनत, सादगी और शानदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जी हां, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है अभिनेता विक्की कौशल को, एक ऐसा कलाकार जिसने ये साबित किया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो साधारण शुरुआत भी इंसान को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 16 मई यानी कि आज का ही दिन 1988 को मुंबई में जन्मे विक्की कौशल एक पंजाबी परिवार से आते हैं। उनके पिता श्याम कौशल बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं और उनकी मां वीना कौशल एक गृहिणी हैं। उनका छोटा भाई सनी कौशल भी अभिनेता है। विक्की का बचपन बहुत ही अधिक ऐशो आराम में नहीं बीता। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनका परिवार मुंबई की एक साधारण चौल में रहा और संघर्षों के बीच उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। बचपन से ही विक्की पढ़ाई में अच्छी थी। उन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का असली सपना उसे चैन से बैठने नहीं देता। इंजीनियरिंग करने के बाद जब उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया को करीब से देखा तब उन्हें महसूस हुआ कि उनका दिल अभिनय की दुनिया में बसता है और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का असली दौर। बहुत से लोग सोचते हैं कि फिल्मी परिवार से जुड़े लोगों को आसानी से मौके मिल जाते हैं, लेकिन विक्की कौशल की कहानी थोड़ी सी अलग है। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शन झेले और लंबे समय तक मेहनत की। उन्होंने निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। श्रोताओं, जानेंगे इनके बारे में। अभी सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता विक्की कौशल के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि फिल्मी परिवार से जुड़े लोगों को आसानी से मौके मिल जाते हैं, लेकिन विक्की कौशल की कहानी थोड़ी सी अलग है। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेले और लंबे समय तक मेहनत की और गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। फिर आया वो मौका जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 2015 में फिल्म मसान रिलीज हुई। इस फिल्म में विक्की कौशल ने दीपक नाम की युवक का एक किरदार निभाया। ये फिल्म भले ही व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन समीक्षकों और दर्शकों ने विक्की की अभिनय क्षमता को खुलकर सराहा। उनके अभिनय में दर्द भी था, सच्चाई भी और एक अलग तरह की मासूमियत भी। मसान के बाद लोग कहने

लगे कि बॉलीवुड को एक नया और दमदार अभिनेता मिल गया है। इसके बाद विकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रमन राघव 2.0, राजी, संजू और मन मर्जिया जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। खास बात यह रही कि हर फिल्म में उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। राजी में उन्होंने एक संवेदनशील पति का किरदार निभाया तो संजू ने अपने दोस्त के रूप में एक शानदार सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन असली धमाका हुआ साल 2019 में फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म ने विकी कौशल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया। उनका प्रसिद्ध डायलॉग हाउस तक जोश पूरे देश की जुबान पर छा गया। इस फिल्म के लिए उन्होंने महीनों तक कठिन सैन्य प्रशिक्षण लिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया और विकी कौशल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म उरी, जिसका गीत अभी आपने सुना, इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। और श्रोताओं, ये सफलता सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं थी, बल्कि उस मेहनत की जीत थी जो वर्षों से चुपचाप चल रही थी। विकी कौशल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे हर किरदार में खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं, चाहे रोमांटिक भूमिका हो, कॉमेडी हो, गंभीर अभिनय हो या देशभक्ति से जुड़ा किरदार, वे हर जगह असर छोड़ते हैं। फिल्म सरदार उधम में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का किरदार निभाया। ये फिल्म उनके करियर की सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण फिल्मों में मानी जाती है। विकी ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि दर्शक भावुक हो उठे। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म जरा हट के, जरा बच के, सैम बहादुर और डंकी जैसी फिल्मों में भी अपनी अभिनय क्षमता दिखाई। सैम बहादुर में उन्होंने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, हाल के वर्षों में उनकी ऐतिहासिक फिल्म छावा भी चर्चा में रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। अब अगर बात करें उनके निजी जीवन की, तो विकी कौशल हमेशा अपनी सादगी और पारिवारिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपने माता पिता और भाई के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा भी है कि उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साल 2021 में उन्होंने फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ से शादी की। दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही। उन्होंने अपने रिश्ते को काफी निजी रखा और फिर राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ी में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह किया। लोगों को विकी और कैटरीना की जोड़ी बहुत पसंद आती है, क्योंकि दोनों ही जमीन से जुड़े नजर आते हैं। विकी कौशल की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका व्यवहार भी है। इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी उनमें घमंड नहीं दिखाई देता। वे इंटरव्यू में बहुत विनम्रता से बात करते हैं, अपने संघर्षों को याद रखते हैं और नए कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उनकी सफलता ये भी सिखाती है कि फिल्म परिवार से जुड़ना काफी नहीं होता, असली पहचान मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा से ही बनती है। अगर उनके अभिनय की बात करें तो विकी उन कलाकारों में शामिल हैं जो किरदार को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि जीते हैं। उनकी आंखों की अभिव्यक्ति, संवाद, बोलने का तरीका और भावनाओं को दिखाने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी उन्हें बेहद पसंद करती है। आज विकी कौशल बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन पर निर्माता बड़े बजट की फिल्में दांव पर लगाने लगे हैं। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने अब तक अपने अभिनय की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वे मसाला फिल्मों के साथ साथ कंटेंट आधारित फिल्मों को भी महत्व देते हैं। उनकी यात्रा युवाओं के लिए एक संदेश है कि अगर आप अपने सपनों को लेकर ईमानदार हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। इंजीनियरिंग से अभिनय तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। श्रोता, एक समय था जब विकी कौशल सिर्फ ऑडिशन देने वाले संघर्षरत कलाकार में थे और आज वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बन चुके हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास छिपा है। विकी कौशल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो सफलता देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। आज उनके लाखों प्रशंसक हैं, उनकी फिल्मों का इंतजार होता है सबको, उनके संवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान अब भी वही है, एक मेहनती और सच्चे कलाकार की।

श्रोता, हम बात कर रहे थे फिल्म अभिनेता विक्की कौशल के बारे में। अब हम सब विक्की कौशल के जन्मदिन के अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी अपने शानदार फिल्मों से दर्शकों का वे मनोरंजन करते रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार समाप्त करने की अपने रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन दोस्तों बड़ा खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। प्रकाश सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का आधार है। अगर प्रकाश ना हो तो ना सुबह होगी, ना रंग दिखाई देंगे, ना ज्ञान होगा और ना ही जीवन की कल्पना संभव होगी। लेकिन आज हम सिर्फ सूरज की रोशनी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस आधुनिक प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी की जिसने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट तक, अस्पतालों से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक, खेती से लेकर शिक्षा तक, हर जगह कहीं ना कहीं प्रकाश आधारित तकनीक काम कर रही है। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रोताओ, प्रकाश क्या है? जब हम प्रकाश शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सूरज, दीपक या बिजली का बल्ब आता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि ऊर्जा का एक अद्भुत रूप है। इसी प्रकाश को समझते समझते इंसान ने ऐसी तकनीकें विकसित की जिन्होंने दुनिया को आधुनिक बना दिया। आज एलईडी बल्ब, लेजर मशीन, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, सोलर पैनल, मेडिकल स्कैनिंग, कैमरा, बारकोड स्कैनर, ये सब प्रकाश आधारित तकनीकों के उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तकनीकें केवल सुविधा नहीं दे रही बल्कि मानव जीवन को सुरक्षित, तेज, सरल और बेहतर बना रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को हर वर्ष 16 मई यानी कि आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाती है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि प्रकाश विज्ञान और प्रकाश आधारित तकनीक मानव जीवन के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये दिन वैज्ञानिकों, छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम है, क्योंकि जिस समाज में ज्ञान का प्रकाश होता है वही समाज आगे बढ़ता है। इस विषय पर और भी बातें करेंगी, अभी सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज चिकित्सा विज्ञान में प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले जिन बीमारियों का इलाज कठिन था, आज उन्हें लेजर तकनीक से आसानी से ठीक किया जा रहा है। लेजर सर्जरी, आज आंखों की लेजिक सर्जरी, किडनी स्टोन उपचार, कैंसर थेरेपी, त्वचा उपचार, इन सब में लेजर तकनीक का उपयोग हो रहा है। लेजर किरणें इतनी सटीक होती हैं कि शरीर के केवल उसी हिस्से पर असर डालती हैं जहां इलाज की जरूरत होती है। इससे दर्द कम होता है, खून कम निकलता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। सोचिए, प्रकाश अब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए भी इस्तेमाल में आ रहा है। मेडिकल इमेजिंग जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और एंडोस्कोपी जैसी तकनीकें भी प्रकाश और तरंगों के सिद्धांत पर आधारित हैं। श्रोताओं, इन तकनीकों की मदद से डॉक्टर शरीर के अंदर की स्थिति बिना ऑपरेशन के देख सकते हैं। ये विज्ञान का अद्भुत उपकार है। आज हम कुछ सेकंड में वीडियो कॉल कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है ये सब संभव कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है फाइबर ऑप्टिकल तकनीक। अब ये क्या है? पतले कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश संकेतों को भेजा जाता है। इन्हीं प्रकाश संकेतों के जरिए इंटरनेट डेटा हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचता है, यानी आपका मोबाइल इंटरनेट वास्तव में प्रकाश की गति से काम करता है। अगर ये तकनीक ना होती तो आज की डिजिटल दुनिया शायद इतनी तेज ना होती। ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, इन सब पर जो कार्य संभव है, ये सब प्रकाश आधारित संचारित किरणों पर और तकनीकों पर निर्भर है। पहले पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित थी, लेकिन आज स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्क्रीन और ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने का तरीका बदल दिया है। आज गांव का बच्चा भी मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया के बड़े शिक्षकों से पढ़ सकता है। ये संभव हुआ है प्रकाश आधारित डिस्प्ले तकनीक और इंटरनेट की वजह से। एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर और कैमरे ने शिक्षा को आसान और रोचक बना दिया है।

श्रोता, सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलते हैं। आज घरों की छतों, खेतों, फैक्ट्रियों और यहाँ तक कि सड़क लाइटों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इससे बिजली की बचत होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। भारत जैसे देश में जहाँ सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है, सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज खेती भी आधुनिक हो चुकी है। कई जगह किसान एलईडी ग्रो लाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है। ग्रीन हाउस तकनीक में नियंत्रित प्रकाश देकर मौसम से अलग फसल उगाई जा सकती है। ड्रोन कैमरे से खेतों की तस्वीर लेकर बताते हैं कि कहां पानी की कमी है और कहां बीमारी फैल रही है। पानी प्रकाश तकनीक किसानों की मददगार बन चुकी है। आज देश की सुरक्षा में भी प्रकाश तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। सीमा पर तैनात सैनिक रात में भी दुश्मनों की गतिविधियां देख सकते हैं। ये तकनीक कमजोर प्रकाश को बढ़ाकर साफ तस्वीर दिखाती है। आधुनिक रक्षा उपकरणों में लेजर तकनीक का उपयोग सटीक निशाना लगाने के लिए किया जाता है। इससे सुरक्षा प्रणाली और मजबूत हुई है। जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों का अध्ययन करते हैं, तब वे प्रकाश का ही उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप दूर स्थित ग्रहों से आने वाले प्रकाश को पकड़ते हैं। इसी प्रकाश का अध्ययन करके वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि किसी ग्रह पर पानी है या नहीं, वहां जीवन संभव है भी या नहीं। यानी प्रकाश में ब्रह्मांड के रहस्य समझने में भी मदद कर रहा है। आज एलईडी बल्बों ने बिजली की खपत बहुत कम कर दी है। पहले बल्ब ज्यादा बिजली लेते थे और जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन एलईडी तकनीक कम बिजली में ज्यादा रोशनी देती है। इससे ऊर्जा बचती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और ऊर्जा बचाने वाली मशीनें भी इसी दिशा में काम कर रही हैं।

श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और इसी विषय में हम आपसे बातें कर रहे हैं। सिनेमा, टीवी, मोबाइल स्क्रीन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब प्रकाश तकनीक पर आधारित हैं। आज हम 4K वीडियो देखते हैं, लाइव प्रसारण करते हैं, सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं। ये सब आधुनिक प्रकाश तकनीक की वजह से ही संभव हुआ है। कैमरे की लेंस प्रणाली प्रकाश को नियंत्रित करके तस्वीर बनाती है, यानी आज की डिजिटल दुनिया का आधार भी प्रकाश है। आज घरों में सेंसर आधारित लाइट्स लगी हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, बारकोड स्कैनर, सब प्रकाश तकनीक का कमाल है। ये तकनीक समय बचाती है और जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाती है। जहां तकनीक लाभ देती है, वहीं उसका सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। आज अत्यधिक मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों पर असर पड़ रहा है। कृत्रिम रोशनी के कारण नींद की समस्या बढ़ रही है, इसलिए तकनीक का संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। प्रकाश तभी लाभकारी है जब उसका उपयोग मानव हित में और संतुलित तरीके से किया जाए। श्रोताओं, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। अगर आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो विज्ञान को समझना होगा। प्रकाश विज्ञान यानी ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। भविष्य में लेजर इंजीनियर, ऑप्टिकल साइंटिस्ट, सोलर

रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ की मांग और बढ़ने वाली है, इसलिए विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखें, उसे समझिए, अपनाइए और मानवता के हित में उपयोग कीजिए। भारत में प्रकाश आधारित तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान में आधुनिक प्रकाश तकनीकों का उपयोग कर रहा है। भारत में सोलर एनर्जी मिशन तेजी से बढ़ रहा है। देश के वैज्ञानिक नई ऑप्टिकल तकनीकों पर शोध कर रहे हैं। ये गर्व की बात है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। दोस्तों, प्रकाश केवल विज्ञान नहीं बल्कि आशा और ज्ञान का प्रतीक भी है। जब अंधकार होता है तो एक छोटा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। उसी तरह ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। इसलिए हमारे देश में दीप जलाने की परंपरा है। दीपावली में दीपक जलाना केवल

रहा है। देश के वैज्ञानिक नई ऑप्टिकल तकनीकों पर शोध कर रहे हैं। ये गर्व की बात है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। दोस्तों, प्रकाश केवल विज्ञान नहीं बल्कि आशा और ज्ञान का प्रतीक भी है। जब अंधकार होता है तो एक छोटा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। उसी तरह ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। इसलिए हमारे देश में दीप जलाने की परंपरा है। दीपावली में दीपक जलाना केवल उत्सव नहीं बल्कि अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। तो श्रोताओं और दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर हमने जाना कि प्रकाश आधारित तकनीकें किस तरह मानव जीवन को बेहतर बना रही हैं। चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक, खेती से लेकर अंतरिक्ष तक और ऊर्जा से लेकर इंटरनेट तक, हर जगह प्रकाश मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और रोशन कर रहा है। तो आइए हम संकल्प लें कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग मानव हित, पर्यावरण संरक्षण और समाज की भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि जब विज्ञान मानवता के साथ चलता है तभी सच्चा विकास होता है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ की समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 12 बजे हैं, कार्यक्रम लोकमंच में आइए सुनते हैं भक्त सुदामा पर आधारित नौटंकी।

0: हरे सुदामा जो।
1: अरे बाबरी सुन, औरन को धन चाहिए, बाबरी बामन को तो एक भिक्षा चाहिए। सुन प्यारी

मजबूर है, गम भी उठाने को अब हो रहा है विकल, मन ने त्यागा भरम, हो रहा है विकल, मन ये त्यागा भरम।

0: मुट्ठी चावर पड़ोसी से मैं मांग के लाई हूँ, उनकी भेंट करी हूँ और अपनी व्यथा सुनाई हूँ, वे हमारी जरूर सहायता करेंगे।
1: अच्छा अच्छा, जा रहे हूँ भगवान, मैं जा रहे हूँ।

0: महाराज आप कहाँ जाएंगे? द्वारकापुरी तो यही है।
1: यही है?
0: हाँ महाराज।
2: तो भैया श्याम सुंदर सो हमारी मुलाकात करवा।
0: जरूर कराऊंगा महाराज, जरूर कराऊंगा।

0: जो आ गया महाराज। सुदामा जी, आपको श्याम सुंदर जी ने बुलाया है।
1: अच्छा भैया चलो।
2: कहा भाई कैसी कही, द्विजवर ने

आंखों में आंसू छा गए। भर जेठ लई पूछन लगे, आए ना इत

0: Ninja!
1: श्रोताओं, लोकमंत्री के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भक्त सुदामा पर आधारित नौटंकी। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ को फिल्म वीर ज़ारा में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य को फिल्म गैंगस्टर में। नीलेश मिश्रा की शब्द रचना को सरबद्ध किया था प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल के आवाज में फिल्म फना का ये गीत। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने। गीत लिखा था फैज अनवर ने और संगीत था निखिल विनय का। इस गीत के साथ ही हमारे ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
1: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंधन का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर, तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
0: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
2: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
0: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादौर गोरखपुर में वाकई ये बैन अल-अक़वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुइया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशरे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक्कदा मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक्कदा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। ये दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशरे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की

0: 138 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं अपनी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट।

राम राम बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट में। और मैं हूँ आपकी रेडियो बहन सोमा जैन। भाई आज वट सावित्री का व्रत है। आप में से भी हमारी कई बहनों ने ये व्रत रखा होगा, तो सबसे पहले आप सबको इसकी बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व हम बहनों की श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके पति दीर्घायु हो और परिवार की सुख समृद्धि बनी रहे। सच तो ये है कि हम महिलाएं पूरे परिवार की ताकत होती हैं। सुबह सबसे पहले उठना और रात सबसे आखिर में सोना, पूरे घर का ध्यान रखना और व्रत त्योहार रिश्तेदारी आना जाना सब निभाना। ऐसे में कई बार अपनी सेहत को तो हम भूल ही जाती हैं। आज वट सावित्री के त्योहार पर भी हमने घर की सुख शांति की प्रार्थना की, लेकिन सच तो यह है कि घर में सुख शांति तभी रहती है जब परिवार स्वस्थ हो, मन शांत हो और रिश्तों में अपनापन हो। बहनों, हम महिलाएं केवल घर संभालने वाली नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती हैं। मां के रूप में बच्चों का ध्यान रखना, बहू के रूप में परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी के रूप में सहयोग और बेटी के रूप में अपनापन। लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर अपनी खुद की सेहत को सबसे पीछे रख देते हैं। पहले बच्चों को खिला दूं, पहले घर का काम पूरा कर लूं, मेरी तबीयत बाद में देखेंगे। आप भी यही सोचती है ना? क्योंकि यही सोचकर हम अपनी छोटी सी परेशानी को भी कभी कभी बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। पर यदि घर की महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो परिवार भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। अच्छी सेहत केवल बीमार ना होने का नाम नहीं है। अच्छी सेहत का मतलब है शरीर हमारा स्वस्थ हो, हमारा ये जो मन है वो शांत हो और जीवन में हमारे संतुलन हो। हम ग्रामीण बहनें खेत घर पशुओं बच्चों की बुजुर्गों की जिम्मेदारी सब संभालती हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद अक्सर अपनी थकान और कमजोरी को नजरअंदाज कर देती हैं। आज महिलाओं में कई समस्या तेजी से बढ़ रही है। कमजोरी और खून की कमी, उच्च रक्तचाप यानी बीपी की समस्या, मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या, तनाव और मानसिक थकान, ये सब आम बातें हो गई हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सजगता से इन समस्याओं से हम खुद को बचा सकते हैं। सजगता यानी जागरूकता, अपने शरीर की बात को समझना, समय पर जांच कराना, सही भोजन करना और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर की सलाह लेना। बहनों, अगर बार बार कभी आपको चक्कर आए, कमजोरी लगे, सर दर्द हो या बहुत थकान महसूस हो तो उसे सामान्य समझकर टालना नहीं चाहिए। याद रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद का भी ध्यान रखें। आजकल गर्मी के दिन है, ऐसे में हमें अपनी खुद के भोजन में भी फल सलाद को जरूर शामिल करना चाहिए। शिकंजी लस्सी छाछ हमें खुद के लिए भी बनानी चाहिए। अक्सर घर के अन्य सदस्यों को तो हम ये दे देते हैं, पर जब बात अपनी खुद की आती

तो हम यही सोचते हैं, अरे मुझे क्या करना है पी के, अब अपने लिए कौन पिए बनाए, खा तो लिया मैंने खाना, कहाँ भूख लगी है, मुझे क्या होगा, ऐसे ही सोचती है ना आप भी। पर ये सही नहीं है, आपका भी शरीर मौसम अनुरूप चलता है, उसे भी जरूरत है, इसलिए परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। आप स्वस्थ होंगी तो घर में भी शांति बनी रहेगी और खुशी भी रहेगी। वैसे क्या आप जानती हो कि आज शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? शांति केवल देशों के बीच, समुदाय के बीच नहीं होती, असल शांति की शुरुआत तो हमारे घरों से शुरू होती है। जब घर में प्यार हो, सम्मान हो, बातचीत हो और एक दूसरे की समझ हो, तभी घर में सच्ची खुशी आती है। कई बार छोटी छोटी बातें तनाव का कारण बन जाती हैं। आर्थिक चिंता, बच्चों की पढ़ाई, काम का दबाव, रिश्तों में गलतफहमी, लेकिन ऐसे में अगर परिवार के लोग एक दूसरे की बात समझें और मिलकर समस्याओं का सामना करें तो घर में शांति बनी रहती है। बहनों, सेहत में शारीरिक बीमारी की बात ही नहीं आती, हमें ये समझना होगा कि इसमें मानसिक तनाव और थकान, इस पर भी हमें ध्यान देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन सबको मिलाकर ही अच्छी सेहत बनती है। अगर मन हमेशा परेशान रहे, गुस्सा जल्दी आए, रोने का मन करे या हर समय चिंता बनी रहे, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। जरूरी ये है कि आप समझें कि समय एक सा नहीं रहता, समय तो हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए शांति से रह के हर तरह के वक्त को गुजर जाने दीजिए। भजन सुनिए, आसपास की अपनी बहनों से बातचीत करिए, टहलिए, या फिर वो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको शांति देता है वो काम करिए। खुशहाल परिवार तभी होगा जब घर में होगी शांति। एक जरूरी बात, घर की सुख शांति केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के सदस्यों को मिलजुल कर काम करना होगा, महिला का सम्मान करना होगा, उन्हें आराम देना होगा, ये बात समझने की और समझाने की जरूरत है। जहां स्वास्थ्य, सम्मान और अपनापन होता है, वहीं सच्ची सुख शांति रहती है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखें और अपने घर में खुशहाली और शांति पूर्वक रहें। वैसे भी आज का तो आपका वट सावित्री का व्रत भी है, तो चलो भाई, हम तो आज के दिन यही कामना करते हैं कि आपके पति की लंबी आयु हो और परिवार में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहे। तो चलिए इसी बात पे अपने पति की लंबी आयु के लिए, अटल सुहाग के लिए हम प्रार्थना भी कर लेते हैं और गुनगुना लेते हैं कि हमारा ये अटल सुहाग यूं ही बना रहे।

0: तो भाई आपका अटल सुहाग बहनों बना रहे हमारी आज के दिन, यही प्रार्थना है प्रभु से। और जैसा हमने बात करा कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, भाई व्रत त्योहार रखिए लेकिन अपनी सेहत के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तभी तो सुख शांति रहेगी। वैसे भी आज की जो हमारी बहनें हैं ना, वो बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, और ना सिर्फ वो घर संभाल रही हैं, वो घर के बाहर के कामों को भी देख रही हैं। और जो हमारी ग्रामीण बहनों की अगर बात करें तो वो अब किसी से भी पीछे नहीं है, है ना। हम और आप कहाँ किसी से पीछे हैं, आजकल हम लोग भी प्रगति के रास्ते पे आगे हैं। तो चलो इस बात को और अच्छे से समझते हैं हमारी आज की वार्ता में। प्रगति के रास्ते पर ग्रामीण महिलाएं जानकारी दे रही हैं लकी आलम।
1: किसी भी समाज या देश की प्रगति के लिए वहाँ की महिलाओं का योगदान सबसे अहम होता है। महिलाएं वो आधारशिलाएं होती हैं जिन पर एक विकसित व सशक्त देश का निर्माण होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमा

अन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों या महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवता का निवास होता है। आज महिलाओं के बिना किसी भी क्षेत्र में विकास कर पाना असंभव सा लगता है। अच्छी बात तो ये है कि वर्तमान सरकार भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है और बहुत सारी योजनाएं इस दिशा में आ रही हैं जो उनको सशक्त बना सके। लकड़ी के चूल्हे से गैस चूल्हे तक, खुले में शौच से शौचालय तक, शौचालय से बेहतर स्वास्थ्य तक, स्वास्थ्य से शिक्षा और विकास तक, इन सभी दिशाओं में वर्तमान सरकार ने महिलाओं की जागरूकता और उनके सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का अधिकतर समय घरेलू कार्य करने में निकल जाता है। पहले वो लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रही थी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक साबित हो रहा था, लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा महिलाओं को गैस सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त में मिल रहा है, जिसके उपयोग से अब वो आसानी व अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं के समय की बचत, स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं खुद को इसलिए भी सशक्त महसूस कर रही हैं क्योंकि आज गांव में भी उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं। उनके लिए अलग से महिला थाने बने हैं जिसमें अब वो जाने की हिम्मत भी करने लगी हैं और FIR व शिकायत को दर्ज करवा रही हैं। और आज देश में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन व हेल्पलाइन कार्य कर रहे हैं जो उनकी समस्याओं से निजात दिलाकर उनको विकास व प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। पहले ग्रामीण इलाकों में महिलाएं शौच के लिए खेतों में और खुले में जाया करती थी, जिससे उनके साथ तरह तरह की समस्याएं व घटनाएं भी उत्पन्न होती थी। खुले में शौच जाने से स्वास्थ्य में खराबी व बीमारियों का जन्म होता है और लड़कियों को जुर्म का सामना भी करना पड़ता है। आज वर्तमान सरकार के द्वारा घर घर में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसके कारण आज महिलाएं खुद को सुरक्षित व सशक्त महसूस कर रही हैं। गांव में शराब जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ भी जनमत आगे आ रहा है और आज कई राज्य सरकारों ने शराबबंदी का प्रयास भी किया है, जो अपने आप में अत्यंत सराहनीय कदम है। जब से शराबबंदी का प्रयास हो रहा है, तब से गांव की महिलाओं को अपने हस्बैंड से पिटना, गाली गलौज, घरेलू हिंसा, रिश्ता खराबी व रोज के छोटी मोटी समस्याओं से निजात मिलती दिख रही है। आज की जागरूक ग्रामीण महिलाएं खुद ही आगे आकर शराब जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कभी थाने पर प्रदर्शन तो कभी जगह जगह आंदोलन करती दिखाई देती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है, जो पूरे तरीके से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, ऋण, बीमा, पेंशन तक आम व ग्रामीण आदमी की पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज महिलाएं अधिक मात्रा में अपने खाते खुलवा रही हैं। महिलाओं के पर्सनल अकाउंट्स होने से वे अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत समझ रही हैं। फाइनेंशियली मजबूती के साथ ही साथ आज महिलाएं खुद को फिजिकली और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सशक्त महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के वक्त सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार ने इनके हित में एक योजना, सुरक्षित मातृत्व लाभ योजना चलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में सुरक्षित डिलीवरी की संख्या में वृद्धि और प्रसूता मृत्यु दर में कमी लाना है। इस योजना को देश के सभी 650 जिलों में लागू किया गया है और इस योजना में महिलाओं को 6000 रुपए गर्भावस्था सहायता के लिए तथा प्रसूता मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
कल का भविष्य कही जाने वाली बेटियों के लिंग अनुपात में बीते सालों में जो आश्चर्यजनक गिरावट आई है उसको संज्ञान में लेते हुए हरियाणा सरकार ने सर्वप्रथम इस पर पहल की और अब केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया गया। आज बेटियों को

0: बचाने के लिए विभिन्न प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि भविष्य की नींव इन बेटियों के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकार ने बच्चियों के भविष्य और शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का क्रियान्वयन किया है, जो कि एक लघु बचत योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। वर्तमान सरकार के द्वारा देश में कौशल विकास अभियान स्किल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह एक बहुआयामी विकास योजना है। इसके अंतर्गत भारतीय युवाओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सके। यह मिशन सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा व युवती इस जंग का सिपाही है। देश को विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना का आगाज हुआ। इसका मुख्य प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर भी पड़ा है, जिसका उद्देश्य उनको विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की गरीबी को दूर करने के साथ ही साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया जोश व सामर्थ्य भरकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाना है तथा देश में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करना है। दरिया की कसम मौजों की कसम, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदल गया। ये ग्रामीण महिलाओं का जमाना भी तो बदल गया, क्योंकि प्रगति की ओर निकल पड़ी हैं अब ग्रामीण महिलाएं।
1: प्रगति की ओर निकल पड़ी हैं अब ग्रामीण महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं का भी जमाना बदल गया। ऐसे ही विचारों पे अभी आपने सुनी वार्ता, जानकारी दी लकी आलम ने। ये सच है बहनों, आज हमारी जो गांव की बहनें हैं, हम लोग जो हैं, वो अलग अलग राह चुन रही है। पर इसके साथ एक और सच है, भले ही हम कुछ भी कर लें, पर हम सबको पहला प्यार तो अपनी रसोई से ही रहता है। मन तो तभी खुश होता है जब अपनों के लिए कुछ स्वादिष्ट सा अच्छा सा बना लें, और उसके बाद फिर बाकी काम आते हैं। तो आप मेरा इशारा समझ गई है, हम चलते हैं आपकी रसोई की तरफ। तो जल्दी से पेन अपना उठा लीजिए, अपना कलम और अपनी डायरी उठा लीजिए, और आज हम जो बनाने वाले हैं आप उसकी सामग्री लिख लीजिए। बहनों गर्मियों के दिन है और गर्मियों में ना समझ में नहीं आता सब्जी क्या बनाए, रोज यही लगता है आज क्या बनाए तरकारी। और ऐसे में अगर हम कुछ अच्छे अच्छे अचार बना के रख लें तो हमारी बड़ी मदद हो सकती है। तो चलिए इसी बात पे आज हम आपको कैर सांगरी का अचार बनाने की विधि बताते हैं। इसे बना के रखिए और खाने में भी खाइए। तो इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो हमें चाहिए बहनों, एक कप कैर, एक कप सांगरी, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच सौंफ, आधी छोटा चम्मच मेथी दाना, एक छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों, एक चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, खटाई जिसे हम कहते हैं, आधा कप सरसों का तेल, और इसके साथ हमें चाहिए नमक, और वो तो आप जानती हैं, वो हमें चाहिए अपने स्वाद अनुसार। तो ये तो रही सामग्री कैर सांगरी का अचार बनाने की। अब इसे बनाना कैसे है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले कैर और सांगरी को थोड़ी देर पानी में भिगो देना है, फिर अच्छी तरह धोकर दो से तीन बार उबाल लेना है, ताकि जो इसकी कड़वाहट है, ये थोड़ी कड़वी होती है, वो निकल जाएगी अगर आप इसे उबाल लेंगी और धोकर। फिर पानी छान कर इसे अलग रख देना है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करना है, उसके बाद उस तेल में राई, मेथी दाना, सौंफ और हींग डालकर हमें भून लेना है। अब ये जो उबली हुई हमारी कैर और सांगरी है वो हम उसमें डाल देंगे। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर, जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर, इसको उसमें डाल देना है, और फिर अच्छे से हमें उसे मिला लेना है, और अच्छे से मिलाकर 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर उसे पकाना है। जब हमें लगे वो थोड़ी सी पक गई है लगभग 7-8 मिनट के बाद, तो फिर हमें गैस को, अपने चूल्हे को यानी कि बंद कर देना है और ठंडा होने देना है इसे। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे डिब्बे में रख सकती हैं। ये लगभग हफ्ता 10 दिन

तक आराम से चलता है अचार। तो भाई आप जरूर इस कैर सामग्री के अचार को बनाइएगा और सबको खिलाइएगा भी परिवार में, क्योंकि जब आप इसे खिलाएंगी तो पक्का आपकी तारीफ होगी। तो भाई आपकी तारीफ यूं ही बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके घर में सुख शांति हो, यही तो हमारी भी प्रार्थना है। ऐसी ही और भी बातें करेंगे आपसे कार्यक्रम में, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम।

बेनो आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट अपनी बहन सुमा जैन के संग। और आज हमने ढेर सारी बातें करी, बातों का सिलसिला जारी है। और अब हम आपको बताएं कि पता है आज जो है वो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। जी हाँ, मच्छर जो हमें बहुत करते हैं परेशान, कई बार रात में नींद भी नहीं आती क्योंकि मच्छर काटते रहते हैं। और डेंगू का मच्छर तो बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए डेंगू के मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ध्यान रखें कि अपने घर के आसपास हम पानी इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहीं पनपता है। दिन के समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और जो हमारे खिड़की दरवाजे हैं उसमें जाली लगवाएं और मच्छरों को भागने का भी इंतजाम करें। तो भाई इसके लिए दादी जी की सलाह है कि रात को जब आप सोएं तो नीम के तेल के अंदर आप कपूर जला लें, इससे मच्छर बहुत आसानी से भाग जाते हैं। तो दादी जी की सलाह मानिएगा क्योंकि दादी जी की सलाह तो अनमोल होती है, नहीं तो ये जो मच्छर हैं, ये जो खटमल हैं, वो हमें परेशान करते रहेंगे और शायद हम फिर पूरी रात यही गुनगुनाते रहें। क्या सुन लीजिए।

यूं ही गुनगुनाते रहिए और खटमल को दूर रखिएगा भैया, दादी जी की सलाह मानिएगा, वो काटे नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और घर में सुख शांति बना के रखिएगा। इन्हीं विचारों के साथ फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का अपना कार्यक्रम पनघट। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मनहर उदास की गाई चंद गजलें।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास की गाई चंद गजलें। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना।

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता

0: में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC मुंबई और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों गांधीनगर

0: लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।
4: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

श्रोता पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग भैरवी में ठुमरी। आइए सुनते हैं देवाशीष चक्रवर्ती की भटियाली धुन गिटार पर बजाई हुई।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष चक्रवर्ती की गिटार पर बजाई भटियाली धुन। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 2:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं

फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने फिल्म वो कौन थी से लिया है, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनामिका का ये गीत, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर ने, संगीत था आरडी बर्मन का और लिखा था इस गीत को मजरू सुल्तानपुरी ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार के स्वर में फिल्म आराधना से। आनंद बख्शी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है एसडी बर्मन ने।

श्रोता, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ही आगरा केंद्र है, 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तमाशा का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था यार रहमान ने। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह, मिथुन और शाशा के स्वर में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत है मिथुन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गरम मसाला का ये गीत, जिसे गाया था सोनू निगम ने। मयूरपुरी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और सपना मुखर्जी के स्वर में फिल्म फिदा का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत में ढाला है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी अलविदा न कहना का ये गीत, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना को सरबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 3:30 हुए हैं। अब इस सभा के प्रसारण यही समाप्त होते हैं। सांधिकालीन सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री

मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गोइस केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague today. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program, the Prime Minister said the world has been facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis.
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी लिपुलेख दर्रा के विषय में। वार्ता होगी सतत विकास, शांति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी विषय पर। वार्ताकार होंगी रिया मिश्रा। सेगमेंट आइए जाने में प्रकाश वर्ष के बारे में लीजिएगा जानकारी, और सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करती महिला किसान विषय पर आप जानकारी लेंगे। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी सतत कृषि हेतु

अंतर्राष्ट्रीय मिशन विषय पर और चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के विषय में। वार्ता होगी गर्मियों में दिनचर्या और योग विषय पर। वार्ताकार होंगी शैलजा दुबे। अन्य सेगमेंट होंगे नई खोज, जानकारी लीजिएगा मौसम की और मंडी भाव जानिएगा, साथ ही आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी जल ही जीवन है विषय पर। ओजोन परत का महत्व विषय पर वार्ता होगी, जिसके वार्ताकार होंगी अर्चना अग्रवाल। अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न, जानिएगा सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, नई खोजें। इसके अलावा आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें आज वार्ता होगी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के विषय में। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सौरभ जैन।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम भजन संध्या में, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मों से भजन। इसके अलावा फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रेडियो पत्रिका चित्र भारती कार्यक्रम, और रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 5:10 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना चार धाम फिल्म से मन्ना डे महेंद्र कपूर की आवाजों में। उदय शंकर पाणी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

श्रोताओं, चार धाम फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में। उदय शंकर पाणी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था रोशन ने। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं जय मां शेरा वाली फिल्म से ये भक्ति रचना दिलराज कौर और साथियों के स्वर में। कश्मीर कातिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है एस मदन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जय मां शेरावाली फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी दिलराज कौर और साथियों के स्वर में। कश्मीर कादिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था एस मदन ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो, नमस्कार और गुड इवनिंग। ये है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ऋषु वर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस गर्मी में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। वैसे दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर निकलना भी एक चैलेंज है और इसी चैलेंज को मैंने कल एक्सेप्ट किया, यानी मुझे कल वृंदावन जाने का मौका मिला। दोस्तों, वृंदावन की ब्यूटी कुछ ऐसी है कि मन वहीं रुक जाने को कहता है। वृंदावन के वो अद्भुत वृक्ष, यमुना जी का वो शांत किनारा, वो कुंज की पतली पतली गलियां और उनमें इधर उधर घूमते वो शरारती बंदर, जो कभी तो किसी का फोन लेके भाग जाते हैं तो कभी किसी के खाने का सामान। दोस्तों, ये सब देखते और चलते फिरते एट लास्ट में बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंची और प्यारे बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शन दिए और फिर क्या, सारी गर्मी सारी थकान सब गायब हो गई। वैसे ये तो है कि वहाँ की हवा में ही एक अलग शांति, एक प्योरिटी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर गली कोई ना कोई लीला सुना रही हो। और सच कहूँ दोस्तों, ये सब महसूस होता है और फिर फील होता है कि इंडिया सच में इतना ब्यूटीफुल है। हमारे देश में हर जगह अपनी अलग पहचान रखते हैं, कल्चर, ब्यूटी सब अलग है। कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं रिवर्स, कहीं टेम्पल्स हैं तो कहीं फॉरेस्ट।

और ऐसी खूबसूरत और खास प्लेस में से एक है लिपु लेक दर्रा। दोस्तों, क्या आपको लिपु लेक दर्रा के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। देखो, लिपु लेक दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है। ये भारत, नेपाल और तिब्बत के पास हिमालयन रीजन्स में मौजूद है। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पास ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों, मैं अगर इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस की बात करूं, तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक मेजर रूट है। हर साल हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। और मानसरोवर लेक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बहुत सेक्रेट मानी जाती है। माना पहले ये यात्रा काफी कठिन मानी जाती थी, क्योंकि रास्ते चैलेंजिंग थे, सुविधाएं कम थी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो रोड्स और कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से यात्रियों को काफी आसानी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, लिपु लेक दर्रा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। एंशियंट टाइम में इंडिया और तिब्बत के बीच बिजनेस इसी तरह के माउंटेन रूट से हुआ करता था। लोग नमक, ऊन और दूसरे सामानों का बिजनेस किया करते थे। यानी कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि लोगों और कल्चर्स को जोड़ने का एक माध्यम भी था। अब अगर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, तो यही वो जगह है जो हमेशा न्यूज में रहती है, क्योंकि ये एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स के काफी क्लोज है। इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच मौजूद ये रीजन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना जाता है, और कई बार तो चाइना की तरफ से भी इस एरिया को लेकर क्लेम्स और डिस्कशंस देखने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस इंटरनेशनल डिस्कशन का हिस्सा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर एरियाज हमें सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि पीस और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस भी बताते हैं। अलग अलग देशों के बीच कोऑपरेशन और पीसफुल डायलॉग बहुत जरूरी होता है, और शायद यही रीजन है कि हर साल आज के दिन यानी 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन का मैसेज यही है कि अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और कंट्रीज के लोग पीस और रिस्पेक्ट के साथ मिलकर रहें। आज की दुनिया में जहां कई जगह टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स देखने को मिलते हैं, वहीं पीस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और भारत हमेशा से यूनिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मैसेज देता आया है। दोस्तों, लिपु लेक दर्रा हमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं सिखाता, ये हमें नेचर, पीस, यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की इम्पोर्टेंस समझाता है। और शायद यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ हर प्लेस अपने अंदर कोई ना कोई सीख छुपाए रखती है। अब दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को इंतजार होगा गीत और संगीत का, तो चलो सुनते हैं केदारनाथ फिल्म का काफिरानी सॉन्ग और फील करते हैं वो ब्यूटीफुल नेचर।

दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है। वैसे हमारे देश की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी माउंटेन्स, रिवर्स और ब्यूटीफुल प्लेसेस में ही नहीं, बल्कि उन लोगों में से भी है जो हर दिन मेहनत करके भारत को आगे बढ़ाते हैं। कोई बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं, तो कोई खेतों में मेहनत करके हर घर तक अन्न पहुँचाते हैं। और अक्सर जब फार्मिंग की बात होती है तो लोगों के माइंड में खेतों में काम करते पुरुषों की तस्वीर आती है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि भारत की रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने में वुमेन फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। आज गांवों में लाखों महिलाएं खेती, डेयरी, लाइफ स्टॉक और फूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं। कई महिलाएं सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करती हैं, क्रॉप संभालती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। दोस्तों, इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और स्टोरेज जैसी कई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन

0: बार उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना हाईलाइट ही नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। बट सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की मदद से वुमेन फार्मर्स फाइनली इंडिपेंडेंट बन रही हैं। कई महिलाएं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रही हैं। और दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो और सिक्किम का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, क्या आपको पता है सिक्किम भारत का पहला फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट माना जाता है। इससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों की हेल्थ भी बेहतर होती है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज 16 मई का दिन एक और वजह से भी खास है, क्योंकि आज सिक्किम दिवस भी सेलिब्रेट हो रहा है। इस दिन 1975 में सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का 22वां स्टेट बना था। दोस्तों, सिक्किम अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी काफी फेमस है, जहां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है। आज वुमेन फार्मर्स सिर्फ खेती तक लिमिटेड नहीं है, कई महिलाएं एग्री बिजनेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए उनका सम्मान और एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और आज महिलाएं एजुकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और सोशल डेवलपमेंट जैसे हर फील्ड में अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस दर्ज करा रही हैं। और इसी इम्पॉर्टेंट थॉट के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वार्ता की तरफ, जहां आज हम सुनने जा रहे हैं सतत विकास में शांति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, वार्ताकार रिया मिश्रा से।
1: साथियों, जिस तरह एक पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी तरह दुनिया का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार न हो, ऐसा मानना था स्वामी विवेकानंद का। उनके द्वारा कही गई ये बात आज के सतत विकास के दौर में और भी प्रासंगिक हो गई है। आज हमारे देश की महिलाएं तकनीक, विज्ञान और राजनीति में नेतृत्व कर रही हैं। उनके इसी अदम्य साहस और अटूट विश्वास को ही शायद पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे प्रतीक दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन विश्व के सतत विकास, शांति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल नारों तक ही सीमित रहने का विषय नहीं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का आधार है। साथियों, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसा भविष्य जो सुरक्षित हो, हरा भरा हो और जहां संसाधनों का बंटवारा न्यायपूर्ण हो। यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्यों में जेंडर इक्वालिटी पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। सतत विकास की नींव तब पड़ती है जब समाज में बेटी को बोझ नहीं बल्कि एक वरदान माना जाता है। हमें न केवल कन्या भ्रूण हत्या जैसे कलंकों पर प्रहार करना है, बल्कि करोड़ों बेटियों के हाथ में कलम थमानी है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह केवल अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढती, बल्कि वह परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण के प्रति सचेत होती है। शिक्षित महिलाएं पानी की बचत, ऊर्जा के संरक्षण और जैविक खेती जैसे सतत कार्यों में पुरुषों से कहीं आगे हैं। इसलिए अगर हमें एक सुरक्षित पृथ्वी चाहिए तो हमें पहले अपनी बेटियों को बचाना और पढ़ाना होगा। साथियों, शांति का मतलब केवल सरहदों पर सन्नाटा नहीं है। असली शांति वह है जहां समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, खुद को सुरक्षित महसूस करें। मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाएं पीस मेकर्स होती हैं। उनमें विवादों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां शांति वार्ताओं में महिलाओं की भूमिका रही, वहां समझौते ज्यादा लंबे समय तक टिके। जब हम उन्हें आत्मरक्षा और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं तो हम एक भयमुक्त समाज की नींव रखते हैं। आज की नारी केवल घर की शांति नहीं बनाए रखती, बल्कि वह सेना और पुलिस में शामिल होकर राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य शांति की प्रहरी भी बनी हुई है। लोकतंत्र की सार्थकता समान प्रतिनिधित्व में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को नई ऊंचाई तब मिली जब देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को स्वीकार किया। ये अधिनियम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि अब महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में अग्रणी होंगी। जब एक महिला जनप्रतिनिधि बनती है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों जैसी बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देती है। पंचायतों में तो महिलाएं पहले से ही नेतृत्व कर रही हैं, अब देश की सबसे बड़ी पंचायतों में भी उनकी आवाज़ गूंजेगी, जिससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा समावेश

0: पेशी और पारदर्शी बनेगा। साथियों, जब हम विकास और लोकतंत्र की बात करते हैं तो आज के डिजिटल युग में तकनीक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सतत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तकनीकी नवाचार। आज भारत की बेटियां केवल उपभोक्ता नहीं है बल्कि वे निर्माता भी हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसे हम संक्षेप में स्टेम कहते हैं, इन क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी दुनिया के कई विकसित देशों से भी अधिक है। चाहे इसरो के मंगल मिशन का सफल प्रक्षेपण हो या रक्षा क्षेत्र में मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके पास जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान है। जब एक महिला तकनीक से जुड़ती है तो वे पूरे समाज के लिए सुलभ और समावेशी समाधान विकसित करती है। लोकतंत्र के डिजिटल होते स्वरूप में भी महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब बैंकिंग, ई लर्निंग और सरकारी सेवाओं का उपयोग स्वयं कर रही हैं। ये आत्मनिर्भरता ही असली लोकतंत्र है, जहां एक महिला को अपने अधिकारों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं अब वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर मानव अधिकारों और शांति के लिए अपनी आवाज उठा रही हैं। साथियों, अगर हमें वास्तव में एक विकसित भारत की कल्पना करनी है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक की हर चाबी हमारी बेटियों के हाथ में हो। हमें उन्हें केवल साक्षर नहीं बल्कि डिजिटल रूप से सशक्त बनाना होगा। जब तकनीक और नारी शक्ति का संगम होगा तभी सतत विकास, शांति और लोकतंत्र का यह त्रिकोण पूर्ण होगा। ये नया भारत है जहां नारी अब केवल विकास का हिस्सा नहीं बल्कि विकास की बागडोर संभाले हुए है। साथियों, जब हम लोकतंत्र और विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़े शहरों और ऊंची इमारतों की ओर जाता है, लेकिन भारत की असली आत्मा उसके गांव में बसती है। और आज गांव की तस्वीर बदलने का श्रेय हमारी ग्रामीण नारी शक्ति को जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने केवल संख्यात्मक बदलाव नहीं किया है बल्कि प्राथमिकताओं को बदल दिया है। एक महिला सरपंच जब गांव का नेतृत्व संभालती है तो उसकी प्राथमिकता सूची में सड़क से पहले साफ पानी, स्कूल और शौचालय आते हैं। ये सतत विकास का सबसे व्यवहारिक रूप है। वे जानती हैं कि यदि गांव की बच्ची सुरक्षित स्कूल जा सके और घर में स्वच्छ जल उपलब्ध हो तो विकास की राह आसान हो जाती है। इसके साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक लोकतंत्र की एक नई इबारत लिखी है। आज करोड़ों महिलाएं इन समूहों से जुड़कर न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि वे समाज में निर्णय लेने की शक्ति भी हासिल कर रही हैं। जब एक साधारण ग्रामीण महिला बैंक जाती है, हिसाब किताब करती है और अपने व्यापार के फैसले खुद लेती है तो वह सही अर्थों में लोकतंत्र को जी रही होती है। शांति स्थापना के क्षेत्र में भी इन ग्रामीण महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाना हो या घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी हो, ये महिलाएं सामाजिक शांति की रक्षक बनी हुई हैं। वे जानती हैं कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौल है जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। साथियों, विकास की इस यात्रा में जब तक गांव की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को बराबरी का हक नहीं मिलता तब तक हमारा लोकतंत्र और शांति के प्रयास अधूरे रहेंगे। साथियों, कानून और योजनाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स की सफलता केवल सरकारी आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारी गलियों और घरों में भी दिखनी चाहिए। हमें एक ऐसा लोकतंत्र बनाना है जहां महिलाओं की राय को न केवल सुना जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए। सतत विकास के लिए हमें महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और तकनीक से भी जोड़ना होगा। साथियों, आज की नारी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वे सतत विकास की निर्माता है, शांति की दूत है और लोकतंत्र की रक्षक है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुनी वार्ता सतत विकास में शांति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, वार्ताकार रिया मिश्रा से। और हमने समझा कि सच में आज विमेन पार्टिसिपेशन हर फील्ड में इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। दोस्तों, जब हम डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और बदलते भारत की बात करते हैं तो नेचुरली हमारा ध्यान उन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ भी जाता है जिन्होंने इस पूरे सप्ताह देश और स्पेशली यूथ को काफ़ी इम्पैक्ट किया। जैसे डिफेंस सेक्टर में भारत को एक बड़ी अचीवमेंट मिली। 8 मई 2026 को DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइंस्टीन से MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल

टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल किया। इस मिसाइल ने इंडियन ओशियन रीजन में मल्टीपल पेलोड्स को सक्सेसफुली टारगेट किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ और डिफेंस कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। इसके अलावा इस वीक टेक्नोलॉजी और एआई भी काफ़ी चर्चा में रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई और इनोवेशन को इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बताया। उन्होंने यूथ को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए इनकरेज भी किया। साथियों, साथ ही साथ इस सप्ताह हेल्थ अवेयरनेस भी काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि आज नेशनल डेंगू डे के मौके पर लोगों को क्लिनलीनेस मेंटेन करने, वाटर लॉजिंग अवॉइड करने और मस्कीटो प्रोटेक्शन को लेकर जागरूक किया गया है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि चेंजिंग वेदर और एक्सट्रीम हीट की वजह से डेंगू केसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस अचीवमेंट्स और साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करते हैं तो साइंस से जुड़े कुछ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स जानने का बड़ा मन करता है। तो अब चलो अपने अगले सेगमेंट आइए जाने में समझते हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक को, जो है लाइट ईयर। अब वैसे तो कई लोग सोचते हैं कि लाइट ईयर शायद टाइम मेजर करने की यूनिट होगी, लेकिन एक्चुअली लाइट ईयर टाइम नहीं बल्कि डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग यूनिट क्यों? तो देखो, हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि वहाँ डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने लाइट ईयर का यूज शुरू किया। लाइट यानी प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, यानी सिर्फ 1 सेकेंड में लाइट अर्थ के लगभग 7 चक्कर लगा सकती है। अब इमेजिन करो एक पूरे ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस तय करती होगी, और वो जो डिस्टेंस तय करती है ना, उसे ही लाइट ईयर कहा जाता है। एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, यानी अगर कोई स्टार अर्थ से 5 लाइट ईयर दूर है ना, तो उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 5 साल लगेंगे। और दोस्तों, यही चीज स्पेस को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं तो एक्चुअली हम उनका प्रेजेंट नहीं बल्कि उनका पास्ट देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइट को हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज इतने दूर होते हैं कि उनकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में हजारों क्या लाखों साल लग जाते हैं। दोस्तों देखिए, आज स्पेस साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि साइंटिस्ट ब्लैक होल, गैलेक्सीज और डिस्टेंट प्लैनेट्स तक की स्टडी कर रहे हैं। नासा, इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार यूनिवर्स के नए नए सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों, लाइट ईयर सिर्फ साइंस का कंसेप्ट नहीं है बल्कि ये हमें यूनिवर्स की विशालता का एहसास कराता है। जब हम सुनते हैं ना कि कोई गैलेक्सी लाखों लाइट ईयर दूर है, तो हमें समझ आता है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा और कितना मिस्टीरियस है। और शायद साइंस की यही सबसे खूबसूरत बात है कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ही ज़्यादा वंडर फील करते हैं। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप आसमान में देखो तो ये ध्यान रखना कि ये जो स्टार्स और गैलेक्सी आप देख रहे हैं ना, ये पास्ट है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आप स्टार अभी देख रहे हो वो शायद एक्सप्लोर होकर गायब भी हो चुका हो। दोस्तों, इससे हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो बीत चुका है उसे जाने दो, बीती बात को मन में मत रखो। उस बात से अगर कुछ सीख पाओ तो सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि व्हाट मैटर इज द फ्यूचर नॉट द पास्ट, क्योंकि बीते हुए वक्त को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। तो चलो, इसी ज्ञान के साथ आइए सुनते हैं अपने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से गुड बाय करने का। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

श्रोताओं, आज के ग्रामीण कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, जेठ का महीना चल रहा है, यानी गर्मी का मौसम। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले तक हल्की बरसात और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी में राहत मिली थी, लेकिन मौसम तो गर्मी का है, तो भाई गर्मी अब पड़ेगी। इस गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का और अपने पालतू पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हल्के रंग के कपड़े पहनकर निकलें। खेतों पर जाते समय लू लपट लगने का खतरा रहता है, इसीलिए इन दिनों अपने साथ गमछा या स्वाफी के साथ साथ छाता साथ में रखें। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, तरल और हल्का भोजन करें। आम का पना, नींबू की सिकंजी, लस्सी या मट्ठा का सेवन करते रहें। साथियों, हम किसानों को इस गर्मी के मौसम में भी ढेर सारे खेती किसानी के काम रहते हैं, पर देखिए आर्थिक रूप से हम किसानों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें अपने खेतीबाड़ी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यह सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन क्या है,

किसान साथियों, भारत देश की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। जी हाँ किसान भाइयों, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 60% भाग वर्षा सिंचित क्षेत्र में शामिल है। इसीलिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य है जलवायु अनुकूल मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन करना और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था से एकीकृत खेती के माध्यम से हमारे देश की कृषि को टिकाऊ और अधिक उत्पादक बनाना। किसान साथियों, इसके लिए वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास करना बहुत जरूरी है, जिसमें एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना है। एकीकृत कृषि यानी ऐसी कृषि जिसमें खेतों में फसल उगाना, साथ में पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी करना शामिल है। इस एकीकृत कृषि

हमारे देश की कृषि को टिकाऊ और अधिक उत्पादक बनाना। किसान साथियों, इसके लिए वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास करना बहुत जरूरी है, जिसमें एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना है। एकीकृत कृषि यानी ऐसी कृषि जिसमें खेतों में फसल उगाना, साथ में पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी करना शामिल है। इस एकीकृत कृषि प्रणाली में फसल खराब होने की संभावना कम होती है और किसानों को साल भर निरंतर आय बनी रहती है। अगर किसी एक क्षेत्र में नुकसान हो भी जाता है, जैसे कि कृषि में, पशुपालन में या मत्स्य पालन में, तो दूसरे क्षेत्र की आय से किसान संभल जाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लागू किया गया है। इससे किसानों को खेत की मिट्टी के या फसल के अनुरूप मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी रहती है, जिससे कि किसान यह जान सकते हैं कि हमें किस फसल को उगाना है और हमारी मिट्टी में किस तत्व की कितनी जरूरत है। उसी के हिसाब से हम रासायनिक खाद का या जैविक खाद का उपयोग करते हैं। इससे हमारे खाद के उपयोग कम होता है और खेत की उर्वरा शक्ति भी बेहतर बनी रहती है, साथ में आर्थिक रूप से भार भी कम पड़ता है। किसान साथियों, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य यह भी है कि भाई ऑन फार्म जल प्रबंधन बेहतर हो। इसके लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम और जल संचयन पर ध्यान दिया जाता है। जी हाँ साथियों, भाई स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिंचाई योजना या टपक सिंचाई योजना से जल की बचत तो होती है, साथ में कृषि में होने वाली फसल को बहुत फायदा मिलता है और पैदावार भी उन्नत होती है। किसान साथियों, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन में खेतों में फसल के लिए जलवायु लचीलापन हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जलवायु अनुकूल तकनीकों के साथ साथ वास्तविक समय के मौसम को विकसित किया जाता है। इससे किसानों को खेती में मौसम के बदलते पैटर्न के अनुकूल होने में मदद मिलती है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि भाई गर्मी के दिन बहुत पहले शुरू हो गए, या कहें कि सर्दी बहुत दिनों आगे तक चल रही है, तो यह जलवायु पैटर्न हमारे किसानों के अनुरूप हो, इस पर भी हमें इस मिशन के अंतर्गत जानकारी दी जाती है और उसी के अनुरूप खेती करने की सलाह दी जाती है। इस मिशन के तहत कृषि वानिकी पर भी ध्यान दिया जाता है। कृषि वानिकी से खेत की मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को अच्छा रखने और किसानों को अतिरिक्त आय देने के लिए खेतों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसान साथियों, इस मिशन का उद्देश्य है जो हम किसानों को जलवायु के झटकों से बचाता है। जी हाँ किसान भाइयों, खेतों की मेड़ों पर अगर पेड़ लगे होंगे तो वर्षा के समय खेत की मिट्टी सुरक्षित बनी रहती है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति को नुकसान नहीं होता। साथ में अगर खेतों पर पेड़ होते हैं तो उसके नीचे की मिट्टी भी उर्वरक अच्छी उपजाऊ बनी रहती है। किसान साथियों, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इसलिए शुरू किया गया ताकि कृषि को लाभ मिले। इसके तहत ऐसे काम किए जाए हैं कृषि उत्पादकता निरंतर रूप से मिलती रहे, सतत रूप से कृषि से हमें उत्पादकता मिलती रहे, यही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर बनाना है। इसीलिए किसान साथियों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं सिंचाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, अपनी खेती बाड़ी को बेहतर और निरंतर लाभ लेना है तो इस सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन को अपनाएं और इसके तहत आने वाली योजनाओं को अपनाकर अपनी खेती बाड़ी को सतत यानी निरंतर उत्पादक का साधन बनाएं। किसान साथियों, बेहतर कृषि के लिए हम नई तकनीक एवं नई वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते रहते हैं, जिसका लाभ हमें मिलता भी है। तो वैज्ञानिक खोजों और आविष्कार किसी भी क्षेत्र के हो, उसका लाभ समाज को जरूर मिलता है। जैसे आज के दिन देखिए, आज यानी 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को दर्शाता है। आज का यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, चिकित्सा और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर भी करता है, साथ में इस क्षेत्रों में प्रकाश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, प्रकाश

प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी ने हमें दुनिया को असाधारण तरीकों से बदलने में मदद की है। प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी जैसे कि माइक्रोस्कोप, एक्सरे की मशीनें, टेलीस्कोप, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक लाइट और टेलीविजन स्क्रीन भी शामिल है। जी हाँ साथियों, इन सभी के लिए प्रकाश के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है। श्रोताओं, हर एक खोज और आविष्कार का उपयोग शांति और विकास के लिए हो, आज के दिन हम यही कामना करते हैं। आपके साथ अपने कार्यक्रम को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस भीषण गर्मी में हमारी लोक गायिका मिथिलेश जी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं इस मधुर लोकगीत के माध्यम से।

0: किसान साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कि नई खोज और नए आविष्कारों की, जिनका उपयोग शांति और विकास के लिए किया जाए तो समाज और देश को बहुत लाभ होता है। अब देखिए, कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीक और नई खोजों से क्रांति आई है, जिससे खेती की लागत और मेहनत कम हुई है। अभी इन दिनों नई खोज में जैसे ड्रोन तकनीक है, ऑटोनोमस ट्रैक्टर और कृषि रोबोट की खोजें हैं। ड्रोन का उपयोग अब कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जा रहा है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। ऐसे ही ऑटोनोमस ट्रैक्टर, यहां एआई आधारित ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के जीपीएस का उपयोग करके खेत में जुताई, बुवाई और कटाई का काम कर सकते हैं, जिससे किसान की मेहनत कम लगती है। इसके अलावा इन दिनों कृषि रोबोट की खोज हुई है। इसका उपयोग फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसलों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। किसान भाइयों, ठीक ऐसे ही स्ट्रो बेलर, जीरो टिल ड्रिल और सुपर सीडर ऐसे उन्नत कृषि यंत्र हैं, जिनसे कि किसानों की मेहनत कम होती है, साथ में समय की बचत भी होती है। साथियों, हाल के वर्षों में कीटनाशकों की भी बहुत सारी खोजें हुई हैं और हमारी कृषि को उनसे लाभ हुआ है। कीटनाशकों की नई खोजें हैं, जैसे कि नैनो कीटनाशक है, माइक्रोबियल कीटनाशक है, नीम और जैविक कीटनाशक हैं। नैनो कीटनाशक पौधों की पत्तियों पर मजबूती से चिपक जाते हैं और बारिश से धुलते भी नहीं है, जिससे किसान कम मात्रा का उपयोग करके भी बहुत बेहतर परिणाम ले सकते हैं। और यह नैनो कीटनाशक कीटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक कीटनाशक है माइक्रोबियल कीटनाशक, जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये केवल लक्षित कीटों पर असर करते हैं, बिल्कुल हानिकारक भी नहीं होते और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, लक्षित कीट यानी जिस कीट को मारना है उसी से संबंधित फंगस, बैक्टीरिया या फिर वायरस का कीटनाशक हम उस पर छिड़काव करेंगे, जिससे वही मरेगा, बाकी किसी को नुकसान इसका नहीं होगा। इसके अलावा नीम और जैविक कीटनाशकों की नई खोज हुई है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नीम और लहसुन के अर्क को अधिक प्रभावी बनाया जाता है इसमें, जो एप्सम साल्ट और नीम के तेल से बनते हैं। ये कीटों को सुखाकर मार देते हैं। किसान साथियों, कृषि यंत्रों और कीटनाशकों की इन नई खोजों का लाभ लें और कृषि को बेहतर बनाएं। साथियों, खेती किसानी से अच्छा लाभ लें इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और वह तभी कर पाते हैं जब हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करें। इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ किसान भाइयों, खासकर इन गर्मियों के दिनों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज हमारी वार्ता में शैलजा दुबे आपको गर्मियों में दिनचर्या और योग पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया, तो दुनिया भर के देशों ने योग की महत्ता को समझते हुए प्रतिवर्ष 21 जून को इसे मनाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य के लिए योग का मानव जीवन में एक विशेष स्थान है। योग आज के अति आधुनिक युग में तब अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब मानव शरीर प्रदूषण की चपेट में हो। योग और स्वच्छता के प्रति ग्रामीण एवं शहरी युवकों को जागरूक करके भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। योग प्राचीन परंपरा और संस्कृति की एक अमूल्य देन है। योग सामंजस्य स्थापित करता है हमारे शरीर

और मन के बीच, हमारे विचारों और कर्म के बीच, हमारे मानव समाज और आसपास की प्रकृति और वातावरण के बीच। योग व्यायाम मात्र ही नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व एवं प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा स्वास्थ्य संरक्षण में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक कार्यों में और स्फूर्ति, ऊर्जा, उत्साह लाने के लिए व्यायाम तो जरूरी है ही, साथ ही में अपनी दिनचर्या में हम कम से कम 15 से 20 मिनट योग अभ्यास के लिए भी रखने चाहिए। व्यायाम से शरीर में बल बढ़ता है, मजबूती आती है। योग द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति के लिए हजारों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने अनेकों प्रयोग किए। योगासन से शरीर का मल, विष दूर होता है। जहाँ साधारण व्यायाम से थकान महसूस होती है, वहीं योगाभ्यास से मस्तिष्क में चेतना आती है। योग मन तथा शरीर को स्थायी स्वास्थ्य प्रदान करता है। अगर हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो योग जीवन जीने की एक कला है। हम दैनिक जीवन में अगर जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, वही योग है। जब हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों की बात करते हैं तो घर में हो या बाहर खेतों में, वे बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे देश की 70% जनसंख्या गांवों और कस्बों में रहती है, शेष आबादी बड़े बड़े शहरों में रहती है। शहरों में मूलभूत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु गांव में तकनीकी रूप से कम विकसित हैं, या यूं कह लें कि तकनीकी अभी गांवों तक पहुंच ही रही है। शहरों में जिम, फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लिनिक की भरमार है, क्योंकि लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए उचित कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटते। वहीं गांवों में संपन्नता होने के बावजूद लोग कहीं ना कहीं यह सोचते हैं कि हमें कोई कसरत या व्यायाम की जरूरत नहीं है, हम तो खेतों में ही काम कर लेते हैं। परंतु हम कहीं ना कहीं यह भूल जाते हैं कि शहरों में लोग कसरत स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, वहीं गांवों में थके हुए शरीर को आराम देने के लिए मन का स्थिर और चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी अगर देखें तो किसान भाई दिन रात खेतों में कीटनाशक व अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिसके लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना अत्यधिक आवश्यक है। योग से हमारी शारीरिक क्रिया को और बेहतर करके हम अपनी प्रतिरोधकता को बढ़ा सकते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं, जिससे खेतों का उत्पादन एवं हमारे शरीर का स्वास्थ्य दोनों में ही सुधार किया जा सकता है। योग के प्रति लोगों की जागरूकता कम होने की जो मुझे वजह नजर आती है, वह है योग शिक्षा का अभाव और बढ़ता हुआ नशा। आज हर घर में नशे की लत है, चाहे वो बीड़ी, गुटखा, शराब, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन हो। यह सब चाहे तनाव के कारण हो या सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, भावनात्मक या युवा वर्ग के शौक हो। युवा वर्ग को अपने जीवन निर्माण के समय मादक द्रव्यों की आदत लग जाती है। ऐसा आजकल की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में पिछड़ जाने के डर एवं अभावों की वजह से हो सकता है। शहरों में प्रायः माँ बाप अपने बच्चे के लिए थोड़ा अधिक संवेदनशील और मित्रवत होते हैं। गांवों में माहौल और व्यस्तता की वजह से वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। इस कारण से बच्चे अपनी बातें अपने माँ बाप से कहने में हिचकिचाते हैं, या यूं कह ले कि बिल्कुल भी नहीं कह पाते, एवं कुंठा के कारण वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जो मन, शरीर एवं आत्मा तीनों का स्वास्थ्य खराब कर देता है। यदि व्यक्ति बराबर योग और कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता है तो ये व्यसन उनके जीवन में कभी लौट कर नहीं आ सकता। यह मादक द्रव्य स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। योग के लगातार किए गए अभ्यास से इन गलत आदतों से छुटकारा मिल सकता है। जब हम बात करते हैं अपनी महिलाओं की, तो प्रायः देखा गया है कि गांवों में महिलाएं कई कई घंटों तक एक ही स्थान पर बैठी रहती हैं। इससे उनके शरीर में रक्त संचार प्रायः ठीक से नहीं हो पाता है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बेहोशी जैसी समस्या भी नजर आ सकती है और अक्सर आती भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर है, नगण्य है। ग्रामीण लोगों को अक्सर टीवी, अस्थमा, महिलाओं में प्रसूति रोग, खून की कमी आदि अनेक रोग लगे रहते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए योग का अभ्यास प्रामाणिक रूप से प्रभावकारी है। देखा गया है कि प्रसव के समय गाँव में काफी कठिनाइयां सामने आती हैं। योग के माध्यम से इन कठिनाइयों को हम काफी कम कर सकते हैं। योग अगर सही ढंग से किया जाए तो प्रसव बहुत ही साधारण विधि द्वारा करवाया जा सकता है। अगर हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी योग ध्यान केंद्रित करने के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आँखों की रोशनी बढ़ाने हेतु, अच्छा पाचन एवं शुद्ध रक्त मस्तिष्क तक पहुँचाना, दिल व फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ ही योग

0: मानसिक विकारों एवं एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। किसी भी कार्य को करने में सिर्फ एक ही समस्या होती है, वो होती है इंसान की स्वयं को तैयार करने की। जिन विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर रुचि कम होती है या जिनका पढ़ाई में कम मन लगता है या मन नहीं लगता है, उन्हें योग जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर योगासन करने वाले विद्यार्थियों की एकाग्रता बेहतर होती है, वे प्रत्येक क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। इससे विद्यार्थियों का तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। योग शरीर को निरोगी बनाता है, मन को शांत करता है। कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर के सभी अंगों को चुस्त और दुरुस्त रखता है। योग से हमारा मन और मस्तिष्क को भी स्वस्थ और स्थिरता आती है। यह बात पूरी दुनिया ने स्वीकार की है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास केवल वयस्कों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह नौजवान महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए भी है। योग शरीर और मन का संतुलन स्थापित करता है, जिससे कम परिश्रम में ही शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किया जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास ग्रामीण बालकों में बुद्धि विकसित करता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने हमारी वार्ता में शैलजा दुबे से गर्मियों में दिनचर्या और योग पर जानकारी ली, और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और इस गर्मी में आनंद लेते हैं महावीर सिंह चाहर के इस मधुर लोकगीत का।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, इस मौसम में यानी कि गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा तसल्ली हमें कब मिलती है भाई? जब मिलती है जब हमें पीने को पानी मिल जाए और ठंडी हवा की छांव, तो बस मन तृप्त हो जाता है। बेशक भोजन हमें थोड़ी देर बाद भी मिले तो चल जाएगा, पर भरी गर्मियों में पानी ना मिले तो समझो कि हालत खराब। क्योंकि भाई ये हवा, ये जल ही है हमारे जीवन का रस, जिसके बिना कुछ समय भी काटना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मौसम हो आजकल की भीषण गर्मियों का, तो भाई हम सब जल की जरूरत को बखूबी समझ ही सकते हैं। पर साथियों, हमारे देश में कई जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग बारिश को तरसते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर दूर तक चलकर पानी का इंतजाम करते हैं, और ऐसे लोग बखूबी जानते हैं पानी की हर बूंद की कीमत। इसीलिए जब भी उन्हें पानी मिलता है, उसे सहेज कर उसे इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। पर इसी के साथ साथियों, हमारे देश में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पानी की कीमत समझते ही नहीं। अरे भाई, पानी की महत्व पर बात करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि आज का भाई सवाल भी पूछना है। तो सवाल पहले पूछ लेते हैं, और वो ये कि हमारे देश में 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर्स किन्हें कहा जाता है? तो भाई आप सभी सोचिए इस सवाल का जवाब, और हम आगे बढ़ते हैं इस सोच के साथ कि आखिर हम लोग क्यों पानी का इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग, हमने देखा भी है कि घरों में काम करते वक्त नल के पानी को फालतू बहने देते हैं। जमीन के अंदर का पानी कई जगह आरओ प्लांट्स के जरिए कितना बर्बाद होता है, यूं ही नालियों में बहता रहता है, अक्सर हम लोग सब देखते ही हैं। और ये सब शायद हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें जल जो है ना, बहुत ही आसानी से और ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम भी पानी

की कमी वाले क्षेत्रों में रह रहे होते तो शायद आज हम भी एक एक बूंद बचाने की कोशिश करते, जल का महत्व समझते। पर साथियों, अब समय है हमें अपनी सोच बदलने का, अपनी जो व्यवहार है उसको बदलने का, जागरूक होने का, और हर समस्या को सरकार पर ना छोड़कर खुद भी अपनी जिम्मेदारियां समझकर अच्छा नागरिक बनने का। भाई तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन रस यानी कि साफ जल, साफ हवा का इंतजाम कर पाएंगे। और इसके लिए हमें आज से ही हर जरूरी कदम उठाने होंगे। और देखिए, इसीलिए कुछ विभागों की कोशिशों और पिछले साल हुई अच्छी बारिश की वजह से एक बहुत ही सुखद खबर मैंने आज अखबार में पढ़ी कि हमारे शहर आगरा की प्यासी जमीन की सेहत है ना, इस साल कुछ सुधर गई है। यानी बारिश के पानी को सहेज कर जो शहरी क्षेत्र डार्क जोन में थे, वहाँ भूजल स्तर में 1 मीटर से ज़्यादा का उछाल आया है। और ये सब संभव हुआ है साथियों, सरकारी प्रोजेक्ट मेघ पुष्प के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, जिसमें कि बारिश के पानी को पाइपों के जरिए वापस जमीन के अंदर पहुंचाकर भूजल के स्तर को बढ़ाते हैं। तालाब और पोखरों में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि सभी की जरूरतों को पूरा कर सके। और साथियों, भाई हम जानते हैं कि अब तो गर्मियों के बाद बारिश का मौसम आने को ही है, तो भाई क्यों ना हम सभी भी अभी से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को सहेजने के सारे इंतजाम शुरू कर दें ताकि आगे हमें पानी की कमी ना झेलनी पड़े। क्योंकि इन भीषण गर्मियों में तो आए दिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसी जगहों में पानी की खबरें, पानी की कमी की खबरें हम रोज ही सुन रहे हैं। इसीलिए अगर हर कोई अपने अपने गांव, देहात, शहर की खुशहाली के लिए पानी बचाए और कमर कस ले कि हमें इस जीवन रस की रक्षा करनी ही है, तो बस फिर हम हर मुश्किल को आसान कर पाएंगे। और हमें करना क्या है, बस थोड़ी सी कोशिशें करनी है, जल संबंधी अपनी आदतों और लापरवाही में सुधार करना है और हर तरह से जल का संरक्षण करना है, यानी कि बूंद बूंद पानी बचाना है, क्योंकि भाई ये हम सबका जीवन रस जो है।

श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ में हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे अपने जीवन रस पर, यानी कि जल की जरूरत पर, उसकी महत्ता पर और उसके संरक्षण पर। क्योंकि देखिए, अगर हम आज नहीं चेते प्रकृति की दी हुई इन सभी अनमोल चीजों का तरीके से अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम किस भयावह स्थिति में पहुंच जाएंगे, हम सब आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्रकृति की एक और अनमोल देन है और वो है ओजोन परत, जो कि हमारे वायुमंडल में एक छननी की तरह काम करती है और सौर मंडल की जो खतरनाक गैसें हैं उन्हें छान कर हम तक पहुंचाती है ताकि हमारे लिए वो नुकसान ना करें। पर बात फिर वही, हमारी लापरवाही और अत्यधिक प्रदूषण ने अब इस परत को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो साथियों, आज वार्ताकार अर्चना अग्रवाल हमारे साथ जानकारी साझा कर रही हैं इसी ओजोन

0: परत की भूमिका और इसके महत्व पर।
1: ओजोन परत के महत्व को जानने से पूर्व ओजोन का परिचय जानना आवश्यक है। ऑक्सीजन के तीन अणुओं के जुड़ने से ओजोन का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। भूतल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती हैं, जिनमें ओजोन की परत धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, क्योंकि यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा करती है। अगर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत का यह सुरक्षा कवच नहीं होता तो शायद अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जीवनहीन होती। विगत कुछ दशकों में शोधकर्ताओं द्वारा ओजोन परत पे किए गए अध्ययनों में ये पाया गया है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया है कि ओजोन परत में एक छेद हो गया है। इस कारण वायुमंडल में कुल 20-30% ओजोन कम हो गई है। बढ़ते समय के साथ साथ अब उत्तरी ध्रुव पर भी वसंत ऋतु में इस प्रकार के छिद्र दिखाई देने लगे हैं। ओजोन परत के बढ़ते क्षय का मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। मानवीय क्रियाकलापों ने अज्ञानता के चलते वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो धरती पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है। कुछ रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इनका उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं में करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि। धरती पर पेड़ों की अनाधुंध कटाई भी इसका एक कारण है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ओजोन गैस के अणुओं का बनना भी कम हो जाता है। ओजोन परत के बढ़ते क्षय के कारण अनेक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं, जो कि बेहद गर्म होती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती हैं। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से कैंसर, अल्सर, मोतियाबिंद आदि घातक बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। आने वाले कुछ वर्षों में रोगों की संख्या बढ़ने के अनुमान है। ओजोन परत के बढ़ते क्षय को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों ने पिछले 3 दशकों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मार्च 1985 में ओजोन परत के बचाव के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर सरकारी सहयोग, ओजोन परत के सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, CFC उत्पादन की निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर वार्ता की गई। ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों के विरुद्ध वातावरण बनाने जैसे आम उपायों को अपनाने पर देशों में प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत में ओजोन क्षरण पदार्थ संबंधित कार्य का संचालन मुख्यतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता बनाई जा सके। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के केमिकल के बढ़ते प्रयोग, वृक्षों का अनाधुंध कटना, इन सब के कारण ओजोन परत का क्षय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम वृक्षों को लगाएं, ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में वायुमंडल में बनी रहे और इससे ओजोन अणुओं का निर्माण हो। साथ ही साथ उद्योग मालिकों एवं प्रबंधकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे पदार्थों और प्रक्रियाओं का प्रयोग ना करें जो ओजोन परत पर बुरा असर डालते हैं। हमारे पास एक ही तो पृथ्वी है, अतः हमको इस पृथ्वी पर जीव

0: जंतुओं के अस्तित्व हेतु पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मानव भी विलुप्त हो जाएगा। मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संपदा को बचाना अनिवार्य है।
1: श्रोताओं, अभी अर्चना अग्रवाल ने बहुत ही अच्छी तरह से ओजोन परत के महत्व के बारे में हमें बताया। तो भाई, अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति का, उसकी सारी व्यवस्था का संभाल कर उपयोग करते हैं। भाई, अब इसके बाद बारी है आज के सवाल के जवाब की। तो साथियों, भारत में सात बहनें देश के सात पूर्वी राज्यों के समूह को कहा जाता है, और ये राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसी तरह साथियों, हमारा एक प्रमुख उत्तरी पूर्वी राज्य सिक्किम भी है, और हर 16 मई को हम सिक्किम दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1975 में इसी दिन सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, और वहां चल रही राजशाही खत्म होकर लोकतंत्र की शुरुआत वहां पर हुई थी। और साथियों, खुशी की बात यह है कि भाई इस साल सिक्किम अपना 50वां स्थापना दिवस पूर्ण होने का जश्न भी मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और जो पर्यटन है वहाँ का, उसको बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। क्योंकि साथियों, सिक्किम जो है ना, वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति की पहचान तो है ही, साथ ही साथ ये देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी है। यानी कि वहाँ की सारी कृषि गतिविधियाँ पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से की जाती हैं, जिसमें कि किसी भी तरह की रासायनिक खादों का या कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए इसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथियों, हिमालय की गोद में बसा और कंचनजंगा जैसी बर्फ से ढकी चोटियों, कोहरे और बादलों से घिरा ये इतना खूबसूरत राज्य है, जिसे तरह तरह की किस्मों के फूलों की वजह से एक उद्यान राज्य भी माना जाता है। और भाई, यहाँ के बहते झरने, जलप्रपात, इन सब की खूबसूरती तो बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती है। और साथियों, यहाँ के सबसे प्राचीन और मूल निवासियों यानी लेपचा के बारे में तो वहाँ एक बहुत ही पुरानी लोक कथा प्रचलित है, और कहा ऐसा जाता है कि बहुत समय पहले लेपचा लोगों की हंसी जो है ना, वो आकाश में गूंजी और बिखर कर टिमटिमाते तारों में बदल गए। तो भाई, इस लोक कथा से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं वहां के लोग कितने मिलनसार हैं, कितने सरल हैं, और उनका स्वभाव कितना मीठा है, बिल्कुल वहां की खूबसूरती की तरह। तो भाई देखिए, वहां की खूबसूरती के बारे में बात करते करते हमारे और शायद आपके मन में भी ये इच्छा पनपने लगी होगी कि काश कभी हम सब भी सुंदर राज्य में जाएं, वहां की खूबसूरती देखने का हमें मौका मिले। तो चलिए भाई, अब सिक्किम की खूबसूरती के बखान के बाद रुख करते हैं नई खोजों की तरफ। तो साथियों, अभी अखबार में मैंने पढ़ा कि हमारे शहर की ही एक छात्रा ने एक ऐसा स्मार्ट सोलर ट्री बनाया है जो कि बढ़ती ऊर्जा की खपत और महंगाई से बचने का एकदम सटीक साधन है। इस सोलर ट्री में पीवीसी पाइप से तो देखिए पेड़ का तना बना है, और चारों ओर शाखाओं के रूप में सोलर पैनलों को बिल्कुल पेड़ की पत्तियों की तरह से व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि लागत बहुत कम आती है। और इसमें जो पैनल लगाए गए हैं और जो सेंसर लगाए गए हैं, वो सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और साथ ही इस नई खोज की देखिए अच्छी बात ये भी है कि लागत तो इसकी कम है ही, साथ ही साथ ये जगह भी कम घेरता है और ऊर्जा भी ज्यादा पैदा करता है, जिससे कि रोशनी के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें डाली गई है। तो भाई साथियों, हम बधाई देते हैं अपने

शहर की इस होनहार छात्रा को उसकी इतनी अच्छी नई खोज पर। और अब वक्त है आज की खास सेहत टिप का, जो कि जुड़ी है आज के राष्ट्रीय डेंगू दिवस से। तो भाई, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इसके लिए मच्छरों को दूर रखने के जो सभी उपाय हैं वो हमें अपनाने हैं, यानी कि घर के आसपास और घर में साफ सफाई रखना है, कहीं पानी नहीं इकट्ठे होने देना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है ताकि मच्छर हमसे दूर रहें। और इसके साथ साथ गर्मी भी है तो हमें खूब तरल पदार्थ पीना है, और साथ ही साथ जैसे संतरा है, कीवी है, इस तरह के खट्टे फलों का सेवन करना है, जो कि हर तरह के बुखार में लड़ने में मदद करता है। इसीलिए हम तो भाई यही चाहेंगे, आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखें, सेहतमंद रहें और फुर्सत के पलों में लुत्फ उठाएं सुरीले गीतों का।

आप सभी अपनों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए अपनी साथी पूनम जैन को। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था।

जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी

0: भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said, India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a Goods and Services Tax, GST, fraud cartel and has arrested 6 people. Addressing the press conference, Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said that the accused were operating fake firms. He informed that accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He said that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country.

0: especially in the 14 to 18 year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said that according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group are currently out of school. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya and South Interior Karnataka during the next 2 days. According to IMD, similar conditions will also prevail over Arunachal Pradesh, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77kg category. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 186.2 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, वार्ताकार हैं डॉक्टर सौरभ जैन।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा विज्ञान, संस्कृति और सतत विकास सहित हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकाश के महत्व का जश्न मनाने के लिए की गई थी। यह दिन चिकित्सा, संचार, कला और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें उस महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है जो प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों की हमारी दुनिया को आकार देने और भविष्य में नवाचारों को प्रेरित करने में निभाती है। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना की। 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर का सफल संचालन के लिए यह दिन एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने 16 मई 1960 को पहला लेजर उत्सर्जन सफलतापूर्वक किया। लेजर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश की किरण उत्पन्न कर सकता है। यह शब्द लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का लघु रूप है जिसे 1957 में भौतिक विज्ञानी गार्डन गोल्ड द्वारा गढ़ा गया था। लेजर रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रमुख घटक है। इन्हें बारकोड स्कैनर में, कटिंग में, वेल्डिंग उद्योगों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के उपचार में, नेत्र सर्जरी में आदि महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। lightday.org वेबसाइट के अनुसार लेजर इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज संचार, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में समाज को क्रांतिकारी लाभ पहुंचा सकती है। एडिनबर्ग उपकरणों में प्रकाश और लेजर की भूमिका हमारी तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है। हम अणुओं को उत्तेजित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं और मापते हैं कि वे किसी नमूनों के गुणों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रकाश के साथ कैसे संपर्क करते हैं। हमारा मुख्य ध्यान फोटोल्यूमिनेसेंस, रमन, यूवी वेज और क्षणिक अवशोषण सहित विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के लिए बायोस्कोप सिस्टम का निर्माण करना है। ये तकनीकें और उनके द्वारा अनुमत अनुसंधान प्रकाश के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। हमारे पास एडिनबर्ग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तकनीकों और उनकी भूमिका को समझाने के उद्देश्य से विस्तृत वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध है। प्रकाश के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा और बंजर स्थान होगा। दरअसल जहाँ रोशनी होती है वहाँ अक्सर जीवन की प्रचुरता होती है। फिर भी प्रकाश मानवता के लिए और भी अधिक प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाश ज्ञान के साथ साथ चलता है। यह एक ऐसा लेंस

0: है जिसने समाज में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया। इन तकनीकों को प्रकाश के गुणों पर सदियों के मौलिक शोध के माध्यम से विकसित किया गया था। इब्र अल हैथम के मौलिक काम किताब अल मंजिर से शुरू होकर 1015 में प्रकाशित और 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन के काम सहित जो समय और प्रकाश के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा, चिकित्सा, संचार और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। यह उत्सव दुनिया भर में समाज के कई अलग अलग क्षेत्रों को उन गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है जो दर्शाता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति यूनेस्को के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करते हैं। प्रकाश हमारे आसपास की दुनिया को समझने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से है। इसमें अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा कई रूपों में आती है, जिनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगें, पराबैंगनी प्रकाश, गामा किरणें और रेडियो तरंगें शामिल हैं। पृथ्वी ग्रह पर जो प्रकाश देखा जाता है वह ऊर्जा का एक रूप है जो सीधे सूर्य से आता है, जिसे अंतरिक्ष में यात्रा करने में केवल 8 मिनट लगते हैं। हालांकि जिस प्रकाश को देखा जा सकता है उसे सफेद प्रकाश कहते हैं। यह वास्तव में कई अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले के अनुसार प्रकाश की समझ हमें सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हासिल करने की अनुमति देती है। आइए प्रकाश के कुछ अनुप्रयोगों को समझते हैं। रोशनी का उपयोग घरों, कार्यालयों जैसे स्थानों को रोशन करने के लिए किया जाता है। बीमारियों के इलाज में फोटोथेरेपी में यूवी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी ऊर्जा का उपयोग हवा और पानी से बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। आज यदि आप मेरा यह प्रसारण सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वह भी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा चलता है जिसमें प्रकाश का प्रयोग बहुतायत में होता है। सुरक्षा के लिए लाइटें आवश्यक हैं, जैसे वाहनों की हेडलाइट और ट्रैफिक लाइटें। प्रकाश का उपयोग कई घरेलू वस्तुओं जैसे टेलीविजन सेट, माइक्रोवेव, सेलफोन इत्यादि में भी किया जाता है। प्राकृतिक प्रकाश पौधों को बढ़ने में मदद देता है और मनुष्यों को भी कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का हर हिस्सा किसी न किसी तरह से प्रकाश से प्रभावित होता है। यह दिन चिकित्सा, संचार, कला और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन के माध्यम से हमें प्रकाश के महत्व को समझने के साथ साथ हमें ऊर्जा के संरक्षण और बचत के महत्व को भी समझने का मौका मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम बिजली और अन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उचित उपयोग करें, जिससे कि हमारे पर्यावरण को हानि कम से कम पहुंचे। प्रकाश हमारी भलाई और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि ग्रह, जानवर और मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर हैं। प्रकाश का महत्व मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर भावनात्मक कल्याण तक। प्रकाश के महत्व और विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में इसकी भूमिका को उजागर करने के लिए ही हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। वार्ताकार थे डॉक्टर सौरभ जैन। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
2: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
2: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
1: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से

0: प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी, बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चहुंमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन

संघ की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बगैर जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। प्रकाश जो केवल रोशनी नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास का प्रतीक है। श्रोताओं, रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं। रोशनी है तो जीवन है। प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता बल्कि ये हमारे जीवन में नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा का भी प्रदान करता है। श्रोताओं, हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान और तकनीक में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा, संचार, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, हर जगह प्रकाश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में एलईडी, लेजर, सोलर ऊर्जा और ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीक ने दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष की। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था। ये दिन प्रकाश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमारी दुनिया को आकार देने और फ्यूचर इनोवेशंस को प्रेरित करने में और इसके महत्व पर प्रकाश डालने में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्रोताओं, आज जब पूरा विश्व ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहा है, तब हमें प्राकृतिक प्रकाश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हमें ऊर्जा की बचत करने और प्रकाश का सही उपयोग करने का संकल्प भी लेना चाहिए, जो आज बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के जो प्रकाश है, ये हमें सिखाता है कि यदि एक छोटा सा दीपक अंधकार मिटा सकता है, तो एक जागरूक व्यक्ति समाज बदल सकता है।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं प्रकाश दिवस की। प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि ये हमारे जीवन में नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दोस्तों, ये केवल एक श्लोक नहीं बल्कि मानव जीवन का उद्देश्य है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना।

दोस्तों, हमने बात की कि प्रकाश हमारे जीवन में हमारी जीवन को एक नई ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है, और सच माने तो हमारा जीवन ही है प्रकाश से। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों तक को ये माना गया है कि अगर उन्हें प्रकाश ना मिले तो वे भी जीवित नहीं रह सकते। वर्ष 1960 में भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। और लेजर लाइट जिसने और इसके उपयोग ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। आप जानते हैं कि लेजर का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है, तो आइए एक नजर डालते हैं। श्रोताओं, नाजुक चिकित्सा सर्जरी करने में लेजर का उपयोग किया जाता है। हीरे या मोटी धातु को काटने के लिए लेजर का उपयोग होता है। संचार, टीवी और इंटरनेट सिग्नल ले जाने में लेजर का उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर, बारकोड स्कैनर और डीवीडी प्लेयर में इसका उपयोग होता है। और लेजर का उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करता है कि चीजें किस चीज की बनी हुई हैं। तो है ना कमाल लेजर का।

दोस्तों, प्रकाश केवल बाहर नहीं, हमारे विचारों और संस्कारों में भी होना चाहिए। तो आइए हम सभी आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर ज्ञान, सत्य और मानवता के प्रकाश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने साथ साथ सभी के जीवन को प्रकाश से भर दें। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन आइए सुनते हैं जोधा अकबर फिल्म से, बेला शिंदे के स्वर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, जोधा अकबर फिल्म के ये गीत आपने सुना बेला शिंदे के स्वर में। जावेद अख्तर के बोलों को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। अगला गीत सुनने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: भी अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम भजन संध्या में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशन कन्हैया फिल्म से ये भक्ति रचना, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप

श्रोताओं, दाता फिल्म से ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाड़ेकर की आवाजों में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बोल लिखे थे अनजान ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं केदारनाथ फिल्म से ये भक्त रचना अमित मिश्रा की आवाजों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लो में आ गया फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी उदित नारायण, नूतन और साथियों के स्वर में। बोल लिखे थे देव कोहली ने, धुन बनाई थी आनंद राज आनंद ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत दूध का कर्ज फिल्म से अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, दूध का कर्ज फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर का गीत, अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आई मिलन की रात फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। शब्द रचना समीर की थी, संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह

0: में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी।

0: नहीं समाचार दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच

समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद, शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जना मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निमटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निजाम कायम करने पर मुश्तरका तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जना मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। ASML लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ASML के सदर और CEO क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज्म हैं।

0: लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरदस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाब्ता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम अज कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इकतसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताजा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाब करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम निहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की अमूमी तशरीह के मामला पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मअतली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मअतली की हालत में रखने का फैसला किया था और यह कहा था कि यह कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक्तदार आला के हकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निजाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम PB कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए CBI तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम.वी. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म ए.वी. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस.एम. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
4: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहार।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है, कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात।

0: प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
1: सन 1966, निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूं क्योंकि मैं आकाशवाणी हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

0: पड़ेगा।
1: पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक।

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: की बात।
1: गीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
1: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: मुकेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे मेरे हाथ में किधर है।
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ, और दादा ने बोला कि कल ही

0: मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल
1: बहुत
0: जाऊं
1: अच्छी बात
0: और मैं
1: है।
0: चला जा रहा हूं, चला रहा हूं, चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. Pandit Kaivalya Kumar Gurav is a renowned musician and disciple of Pandit Sangameshwar Gurav. He started his musical journey at the age of 15 with Marathi Natya Sangeet. After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की